0: ठीक 6 वाजता आपण ऐकू शकता दिल्ली केंद्रावरून प्रसारित होणाऱ्या हिंदी बातम्या.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा कल संपन्न हो गई. हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव की बातचीत के अलावा इस यात्रा की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के मायने 11 समझौतों पर हस्ताक्षर से कहीं बढ़कर हैं. महत्वपूर्ण खनिजों और यूरेनियम की सप्लाई से लेकर व्यापार, रक्षा, डिजिटल भुगतान और शिक्षा तक, हिंदी और संस्कृत से लेकर खेल और विरासत संरक्षण तक, इस 2 दिवसीय यात्रा ने भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को एक विस्तृत और व्यापक ढांचा प्रदान किया है. व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक संबंधों का बढ़ना, $5 अरब के व्यापार लक्ष्य को 3 साल के भीतर हासिल करने का संकल्प, दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग और राज्य एवं नगर स्तर पर अधिक सहभागिता से भारत की उज्बेकिस्तान के साथ दोस्ती को एक नई गति मिलने की उम्मीद है. सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद.
1: प्रधानमंत्री आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे. वे कल राष्ट्राध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे. श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर कल बिश्केक पहुंचे. मंत्रिमंडल के अध्यक्ष कासिमालिफ आदिलबेक अलेशोविच ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया. उनके स्वागत के लिए पारंपरिक किर्गिज नृत्य का आयोजन भी किया गया. श्री मोदी राष्ट्रपति सादोर जापारोफ के निमंत्रण पर शिखर सम्मेलन के लिए किर्गिजिस्तान की यात्रा पर हैं. आशा है कि शिखर सम्मेलन से अलग श्री मोदी संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे. इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि वे सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित इस क्षेत्र के लिए भारत के विजन को आगे बढ़ाने को उत्सुक हैं. उन्होंने ये भी कहा कि भारत SCO सदस्यों के साथ मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ मुक्त क्षेत्र बनाने की दिशा में काम करेगा. नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हो गई है. राहत और बचाव कार्य जारी हैं. अब भी 2500 से अधिक लोग लापता हैं. आपदा प्रभावित सभी 8 जिलों से शव बरामद किए गए हैं. इस बीच मध्य नेपाल में त्रिशूली नदी में एक और बाढ़ के कारण सस्पेंशन पुल बह गया. विदेश मंत्रालय के अनुसार अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है. करीब 50 लापता भारतीय नागरिकों से संपर्क हो गया है, लेकिन 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका में दक्षिण कैरोलिना के एशविले में G20 और इससे जुड़ी बैठकों में हिस्सा लेंगे. इससे पहले वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हासिल किया है. छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने सुकमा जिले में नक्सलियों के ठिकाने का भंडाफोड़ कर बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है. सुरक्षा बलों ने बेलपोचा गोमपाड़ के घने जंगल में छिपाकर रखे गए विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया. ये संयुक्त अभियान सुकमा जिला बल, जिला रिजर्व गार्ड DRG और बस्तर फाइटर्स ने चलाया. ये कार्रवाई हाल ही में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली कैडरों से मिली विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर की गई. भारत के अभय सिंह ने तुआंकू महरिज स्क्वाश ट्रॉफी जीत ली है. मलेशिया के सेरेम्बन में अभय ने PSA चैलेंजर टूर 15 इवेंट के फाइनल में हांगकांग के हेनरी लेउंग को 3-2 से हराया. ये अभय का 13वां और इस वर्ष का दूसरा PSA टूर खिताब है. इससे पहले उन्होंने मार्च में मुंबई में इंडियन ओपन खिताब जीता था. दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने जीत के साथ शानदार शुरुआत की है. भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराया. पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 159 रन बनाए. शेफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली. शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. ग्रुप बी में आज बांग्लादेश और इंडोनेशिया आमने सामने होंगे. मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा. जर्मनी ने पुरुष हॉकी विश्व कप जीत लिया है. बेल्जियम में फाइनल में जर्मनी ने स्पेन को 1-0

से हराया। जर्मनी की तरफ से मिशेल स्टुथॉफ ने गोल किया। जर्मनी का यह चौथा पुरुष विश्व कप खिताब है। इससे पहले अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह

0: 68 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। सम्मेलन से इतर संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हुई, 2500 से अधिक लोग अब भी लापता। अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में लड़ाक द्वीप पर ईरान के रॉकेट लॉन्चरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने अपने आरंभिक मैच में थाईलैंड को 94 से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्रीय अध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर कल बिश्केक पहुंचे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में सबसे पहले फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद वे महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क जाकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इस प्रतिमा का अनावरण श्री मोदी ने वर्ष 2015 की अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान किया था। प्रधानमंत्री आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के अनेक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इनमें आर्मेनिया, किर्गिस्तान और ईरान के राष्ट्रपति के साथ ही रूस के राष्ट्रपति के साथ होने वाली द्विपक्षीय बैठक भी शामिल है। श्री मोदी आज 6ठे विश्व नॉमेड खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। यह आयोजन मध्य एशिया की समृद्ध जीवंत सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है। प्रधानमंत्री कल 1 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन की 26वीं बैठक को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए बिश्केक से मैं विकल्प शुक्ला।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा कल संपन्न हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव की बातचीत के अलावा इस यात्रा की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के मायने 11 समझौतों पर हस्ताक्षर से कहीं बढ़कर हैं। महत्वपूर्ण खनिजों और यूरेनियम की सप्लाई से लेकर व्यापार, रक्षा, डिजिटल भुगतान और शिक्षा तक, हिंदी और संस्कृत से लेकर खेल और विरासत संरक्षण तक, इस 2 दिवसीय यात्रा ने भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को एक विस्तृत और व्यापक ढांचा प्रदान किया है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक संबंधों का बढ़ना, $5 अरब के व्यापार लक्ष्य को 3 साल के भीतर हासिल करने का संकल्प, दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग और राज्य एवं नगर स्तर पर अधिक सहभागिता से भारत की उज्बेकिस्तान के साथ दोस्ती को एक नई गति मिलने की उम्मीद है। यात्रा का एक शानदार पल तब आया जब राष्ट्रपति शौकत मिर्जियेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान ओली दराजली दोस्तलिक पुरस्कार प्रदान किया। ये पुरस्कार भारत उज्बेकिस्तान संबंधों और सहयोग को मजबूत करने में उनके योगदान को रेखांकित करता है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद के वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था ने जिस गति को हासिल किया है वो आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। अमेरिका दौरे पर वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय से कहा कि भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के बावजूद भारत अपनी आर्थिक विकास की रफ्तार बनाए रखेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद त्रिशूली 3A सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।
5: भारत और चीन के विशेषज्ञों सहित बचाव दल सुरंग के अंदर फंसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। लापता 2500 लोगों में से सैकड़ों लोग नेपाल

0: जल विद्युत परियोजना के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। बुधवार की इस आपदा में नेपाल में मृतकों की संख्या 794 हो गई है। तिब्बत में आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या 16 है, जबकि 546 लोग लापता हैं। त्रिशूली नदी में फिर से बाढ़ के कारण मध्य नेपाल में एक झूलता हुआ पुल बह गया। पुल के बह जाने से गंडकी ग्रामीण नगर पालिका 7 और 8 के निवासियों का पृथ्वी राजमार्ग से संपर्क टूट गया है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: नेपाल में भीषण बाढ़ के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी बैराज के 20 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है।
2: सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक खबरों के बीच सुपौल जिला प्रशासन ने कहा है कि कोसी नदी के जलस्तर में सामान्य गति से वृद्धि हो रही है और कोसी बैराज पूरी तरह सुरक्षित है। स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। वहीं जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण और गोपालगंज जिलों में प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। जिला संसाधन विभाग ने इंजीनियरों को लगातार तटबंधों की निगरानी के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: उड़ीसा में आज एक बार फिर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, क्योंकि उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बना मौसम राज्य को प्रभावित कर रहा है।
3: IMD ने कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश का अनुमान लगाया है। आज बरगढ़ के लिए रेड वार्निंग जारी की गई है, जबकि सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, केंदुझर, सुवर्णपुर, नुआपड़ा, बलांगीर और कलाहंडी के लिए ऑरेंज वार्निंग है। IMD ने चेतावनी दी है कि भारी बारिश से संवेदनशील इलाकों में स्थानीय स्तर पर बाढ़, जल जमाव और नदियों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उत्तराखंड में भी दिन के समय तेज बारिश होने की उम्मीद है। वहीं असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। अमेरिका ने कल रात होर्मुज़ जलडमरू मध्य में लद्दाख द्वीप पर ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। अमेरिकी सेना ने लद्दाख द्वीप पर 2 ईरानी लॉन्चरों को निशाना बनाया, क्योंकि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सैनिकों को होर्मुज़ जलडमरू मध्य में समुद्री बारूदी सुरंगों वाले रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी करते देखा गया था। ईरान के सरकारी प्रसारक ने खबर दी है कि इस हमले में कई ईरानी सैनिक और आम नागरिक मारे गए और घायल हुए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने जॉर्डन में किंग हुसैन और अल अजराक अमरीकी ठिकानों पर हमला किया। भारतीय नौसेना आज मुंबई स्थित निस्तार श्रेणी के दूसरे गोताखोरी सहायता पोत DSV निपुण को शामिल करने जा रही है।
4: विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित पोत निपुण रक्षा पोत निर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। निपुण एक विशेष पोत है जिसे गोताखोरी और गहरे समुद्र में अभियान सहायता के लिए तैयार किया गया है। यह आधुनिक गोताखोरी प्रणालियों और जलमग्न बचाव क्षमताओं से सुसज्जित है और समुद्र में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करने वाले गोताखोरों को निरंतर सहायता प्रदान करने में सक्षम है। यह पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी भारतीय नौसेना की क्षमता को बढ़ाएगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर देश भर के 18 NIFT परिसरों से पास होने वाले छात्रों को डिग्रियां दी जाएंगी। पश्चिम बंगाल सरकार अभूतपूर्व कदम उठाते हुए जनता की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए सरकारी कार्यालयों में जनता दरबार शुरू करने जा रही है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने जिला और ब्लॉक स्तर के जमीनी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक जनता से मिलें। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 2 सितंबर तक मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के दौरे पर रहेंगे। अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान वे शिवपुरी, कोलारस और पिछोर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पहले दिन वे अछरौनी और बामौर कला में स्वास्थ्य केंद्रों, बिजली उप स्टेशनों और एक उप तहसील कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने जीत के साथ शुरुआत की है। भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शिफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। थाईलैंड की पूरी टीम 15 ओवर और 3 गेंद में 65 रन पर सिमट गई। शिफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में कल एक सड़क दुर्घटना

0: घटना में दो लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार अलीपुरद्वार के रहने वाले दो लोग मोटरसाइकिल से दार्जिलिंग घूमने आए थे। रास्ते में मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया और उसने सड़क पर चल रहे एक स्थानीय व्यक्ति को टक्कर मार दी। बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चलाने वाले और स्थानीय व्यक्ति को गंभीर चोटें आईं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर ज्ञानवर्धक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0111-3104-8-0111-2-3-4-4-4-4। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं, नंबर है 9289094044। सवाल #AskAIR के साथ एक्स पर भी पोस्ट किए जा सकते हैं। ये आकाशवाणी है।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है विशाल शर्मा।
2: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर की खबर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। अमर उजाला लिखता है, लंबे समय तक भारत को यूरेनियम देगा उज्बेकिस्तान, 2030 तक सालाना द्विपक्षीय कारोबार $5 अरब पहुंचाने का लक्ष्य। रूस को पेट्रोल निर्यात करने वाला प्रमुख देश बना भारत, जनसत्ता की खबर है। पत्र लिखता है, भारतीय रिफाइनरी ने की पिछले 2 माह में रूस को करीब 10 लाख बैरल पेट्रोल की आपूर्ति। भारत द्वारा नेपाल को राहत सामग्री पहुंचाने से जुड़ा समाचार दैनिक जागरण ने सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, नेपाल का सबसे भरोसेमंद मददगार बना भारत, 4 विमानों से 68.5 टन राहत सामग्री पहुंची, सुरंग बचाव विशेषज्ञ और फॉरेंसिक टीमें भी युद्ध स्तर पर जुटी। नक्सल मुक्त बस्तर को अब हथियार और विस्फोटक डंप फ्री करने में जुटी फोर्स, नारायणपुर के जंगल में राइफल बैरल ग्रेनेड लॉन्चर BGL विस्फोटक का डंप जब्त, राजस्थान पत्रिका की खबर है। देहरादून की गुनगुन ने कैंसर को हराकर सौंदर्य का ताज जीता। अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की सौंदर्य प्रतियोगिता P&I India 2026 का खिताब जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र के अनुसार 2027 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व।
0: धन्यवाद विशाल। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। सम्मेलन से इतर संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हुई, 2500 से अधिक लोग अब भी लापता। अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में लद्दाख द्वीप पर ईरान के रॉकेट लॉन्चरों पर हमले किए, जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने अपने आरंभिक मैच में थाईलैंड को 94 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अराइव्स इन बिश्केक ऑन अ 2-डे विजिट टू किर्गिस्तान टू अटेंड SCO समिट एंड मीट सेवरल SCO लीडर्स ऑन द साइडलाइंस। Finance Minister Nirmala Sitharaman says India is likely to sustain economic growth rate of 7% or more in financial year 2026-27. Death toll in Nepal flash flood rises to 794, while more than 2,500 people still missing. US forces strike Iranian rocket launchers on Ladakh Island in Strait of Hormuz. Iran attacks US bases in West Asia in retaliation. And in women's cricket, India beat Thailand by 94 runs in their opening match of T20 Asia Cup 2026 in Dubai. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has arrived.

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, सलाम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग मुंबई। 107.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल सुनने वाले आप सभी श्रोताओं का मैं आरजे प्रिया तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मस्त मुंबई।

0: जिंदगी कितनी खूबसूरत है, इस खूबसूरत जिंदगी में अपना रंग मिलाइए और देखिए ये जिंदगी और भी हसीन है। 107.1 FM Rainbow, musically yours.
1: जी हाँ, आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आरजे प्रिया। 8:48 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मस्त मुंबई 107.1 मेगाहर्ट्ज पर। और आप सभी के मैसेजेस एज यूजुअल सुबह सुबह आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। और देखिए ना, देखते ही देखते मतलब ये जो आठवां महीना साल का था, आज खत्म होने जा रहा है। अगस्त का महीना हमसे विदा ले रहा है और सितंबर अपनी नई उम्मीदें लेकर दरवाजे पर खड़ा है। जी हाँ, सितंबर दरवाजे पे खड़ा है। और आप क्या सोच रहे हैं, आठ महीने कैसे गुजर गए, कितनी सारी चीज़ें हुई होगी हमारे आसपास, हमारी पर्सनल लाइफ में बहुत सी चीज़ें होती हैं, बातें करेंगे। और आप सभी को फिर बार गुड मॉर्निंग। फिर सिंह अनपुरिया, श्रेया राउत, मिलेश्वर राउत, प्रमोद चिंचोलकर, वैदही, प्रणव शिंदे, राकेश माथुर, प्रमोद कारखानी, विजेंद्र घाटोल, आप सभी को मेरी गुड मॉर्निंग। और देखिए ना, मस्त मुंबई प्रोग्राम है, 31 अगस्त है और क्या होगा खास बताएंगे हमको। लेकिन इस एक प्यारा सा जो गीत है वो तो मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद सुनते रहिए कहीं मत जाइए। मैं जस्ट यू ही और यू आई।
2: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
3: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू,
2: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध, शर्तें लागू।
3: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

जी हाँ, थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, बस थोड़े की ज़रूरत है। एक बहुत प्यारी सी लाइन्स आपको बताना चाहूँगी कि हम जीवन में सबसे ज़्यादा किससे डरते हैं? बदलाव से डरते हैं। नई नौकरी का डर, नए शहर का डर, नए रिश्ते का डर, नई जिम्मेदारी का डर। हम वही पकड़े रहना चाहते हैं जो जानते हैं, भले ही वो हमें तकलीफ दे रहा हो। एक परिचित तकलीफ भी अपरिचित सुख से ज़्यादा सुरक्षित लगती है। लेकिन ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि प्रकृति एक पल के लिए भी नहीं रुकती। बीज टूटता है तभी अंकुर निकलता है, रात ढलती है तभी सुबह आती है, नदी मुड़ती है तो आगे बढ़ती है। बदलाव को दुश्मन मानने वाला जीवन में लड़ता रहता है, उसे गुरु मानने के लिए मानने वाला जो होता है ना, वो हर मोड़ पर एक नई संभावनाएं पैदा करता है। यानी अगर थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है और ज़िंदगी खूबसूरत है, ये तो हम सभी जानते हैं, तो इसके लिए डर के आगे जीत है ये जानना बेहद ज़रूरी है। आप सभी के मैसेजेस आ रहे हैं। गुड।

तुम समझता मैं हिंदी कविता नहीं जानता? मेरे जीवन साथी प्यार किए जा, जवानी दीवानी खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन, सत्यम शिवम।

0: भूल गए
1: जाने मेरा नाम
0: अच्छा?
1: चोरी मेरा काम जाने मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
0: बंडल बाज
1: लड़के मिलन गीत गाता चल
0: बेशरम
1: चार का मौसम

ऐसा कहा जा सकता है। एक शायरी पेश करती हूँ कि बदल दी कश्ती की सूरत भी और साहिल का मंजर भी, कलम जब हाथ में ली वक्त ने तो बदल दिया मुकद्दर भी। जी हाँ श्रोताओं, आज से ठीक 70 साल पहले यानी 31 अगस्त 1956 को देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने राज्य पुनर्गठन विधेयक को मंजूरी दे दी थी। तो भारत के ये जो आड़े तिरछे नक्शा जो है ना, इसको मुकम्मल पहचान मिल गई थी। दरअसल हुआ यूँ था कि आज़ादी के वक्त हमारा देश राजा रजवाड़ों और अंग्रेज़ों के प्रांतों की एक उलझी हुई जंजीर कही जा सकती है, लेकिन जनता की साझी जुबान और संस्कृति का सम्मान करते हुए आज ही के दिन पूरे मुल्क को 14 खूबसूरत राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के एक नए गुलदस्ते में पिरोया गया। आज हम गर्व से जो अपनी प्रांतीय पहचान मानते हैं, उसकी नींव आज ही के दिन यानी 31 अगस्त 1956 को रखी गई थी, क्योंकि हमारे देश का नक्शा सिर्फ जमीन की सरहद नहीं, अनेकता में एकता का, एक जो कहते हैं ना, उसकी जिंदा नज्म है।

सुबह के 9:06 हो चुके हैं और आप सन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल आज प्रिया के साथ. और आज है 31 अगस्त. जी हाँ, और जैसे कि आप जानते हैं कि हर सोमवार हम आपको दिन विशेष की जानकारी देते हैं, कुछ जानकारी आपसे लेते भी है. और आज का ये जो दिन एक

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: दिन विशेष की जानकारी आप ले रहे हैं कार्यक्रम मस्त मुंबई में आरजे प्रिया के साथ। और जैसा कि हमने बताया, आज राज्य पुनर्गठन विधेयक को मंजूरी मिली थी और आज है इंटरनेशनल ओवरडोज अवेयरनेस डे। अब आप सोचते ही रहोगे कि क्या है ये। सीधे शब्दों में कहें तो किसी भी दवाई, ड्रग्स या शराब का शरीर की क्षमता से ज़्यादा इस्तेमाल करना यानी ओवरडोज कहलाता है। और आज का दिन इसी के बारे में जागरूकता फैलाने का दिन है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ओवरडोज सिर्फ गैर कानूनी ड्रग्स से ही होते हैं, लेकिन सच ये है कि बिना डॉक्टर की सलाह के ली गई पेन किलर्स हो या रोज़मर्रा की दवाइयों का गलत कॉम्बिनेशन भी ओवरडोज की वजह बन सकता है। बीमारी कोई भी हो, खुद से डॉक्टर ना बने, दवा हमेशा डॉक्टर की पर्ची देख कर ही ले। खुद भी सुरक्षित रहे और अपनों को भी सुरक्षित रखे। और सुनते रहिए 107.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल। श्रोताओ, एक प्रसिद्ध कविता है, उसकी कुछ पंक्तियां आपको सुनाती हूँ। आपको बतानी है ये कविता किसने लिखी है। और बताने के लिए हमारा मोबाइल नंबर है 8657661071, 8657771071 पर आप जवाब मुझे देंगे। और लैंडलाइन पर भी आप कॉल कर सकते हैं, हमारा लैंडलाइन नंबर है 4515413245153333। तो माफ़ कीजिएगा 4133। तो मैं फिर से बताऊंगी 4515413। तो चलिए वो कविता क्या है आपको सुनाती हूँ। उनके बोल हैं, मैं तुम्हें फिर मिलूंगी, कहाँ कैसे पता नहीं। मैं तुम्हें फिर मिलूंगी, कहाँ कैसे पता नहीं। शायद तुम्हारी कल्पनाओं की प्रेरणा बनकर, या शायद तुम्हारी जहन की एक लकीर बनकर। मैं तुम्हें फिर मिलूंगी, कहाँ कैसे पता नहीं।

नमस्कार, 23 मिनट हो चुके हैं और इस गीत के उस पार मैंने आप सभी श्रोताओं से सवाल पूछा था कि कविता की कुछ पंक्तियां मैंने सुनाई थी, फिर एक बार सुनाऊंगी। जो कविता में जो कवियत्री है वो अपने प्रीतम से कहती है कि मैं तुम्हें फिर मिलूंगी, कहाँ किस तरह नहीं जानती, शायद तुम्हारे तखिल की चिंगारी बनकर तुम्हारे कैनवस पर उतरूंगी, या शायद तुम्हारे कैनवस के ऊपर एक रहस्यमय रेखा बनकर खामोश तुम्हें देखती रहूंगी। मैं तुम्हें फिर मिलूंगी, कब कहाँ कैसे पता नहीं। जी हाँ, और आप सभी श्रोताओं ने जवाब दिए हैं। राकेश माथुर जी हैं, उन्होंने सही जवाब दिया है। शुभदा पांचाल जो है मालाड़ से, उन्होंने भी सही जवाब दिया है। चेतन कुमार जो है बिहार गया से, उन्होंने भी सही जवाब दिया है। अंकित है, उन्होंने भी सही जवाब दिया है। फिरोज सिंह अनपुरिया है, उन्होंने भी सही जवाब दिया है। और बहुत अच्छा लग रहा है। और सही जवाब क्या है तो बताती हूँ आप सभी को। श्रोताओं, आज साहित्य जगत के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। आज उस अजीम शख्सियत का जन्मदिन है जिसने न सिर्फ कागज़ पर अल्फाज उकेरे बल्कि अपनी रूह को शब्दों में ढाल दिया। आज हम याद कर रहे हैं बेहतरीन लेखिका, कवियत्री और आज़ाद ख्याल की मल्लिका अमृता प्रीतम जी को। मशहूर कवियत्री और लेखिका अमृता प्रीतम का जन्म आज ही के दिन 1919 में हुआ था। आज उनकी जयंती मना रहे हैं समस्त साहित्य जगत, और उनके जो चाहने वाले हैं आज उन्हें याद कर रहे हैं। हम उन्हें याद कर रहे हैं, आप उन्हें याद कर रहे हैं। अमृता प्रीतम जी सिर्फ एक लेखिका नहीं थी, वो अपने समय से बहुत आगे की सोच रखने वाली एक बेबाक आवाज़ थी। उन्होंने जो महसूस किया उसे पूरी शिद्दत और ईमानदारी से कागज़ पर उतारा है। चाहे उनका मशहूर उपन्यास पिंजर हो, जिस पर फिल्म बनी थी, मनोज वाजपेयी और उर्मिला मातोंडकर ने प्रमुख भूमिकाएं निभा थी और बहुत प्यारी फिल्म है, और उनकी आत्मकथा कथा जो है रसीदी टिकट, उनकी हर रचना जो है ना दिल में बस उतर जाती है।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक के लिए 7.10%, सीनियर सिटीजन के लिए 7.30% मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने शर्तें लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिच योर लाइफ।
2: फिर एक बार स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। मैं हूँ आरजे प्रिया और हम दिन विशेष की बात कर रहे हैं क्योंकि आज है सोमवार। वक्त हो चला है 9:23 और ये जो आज की तारीख है सिर्फ कैलेंडर पर एक लिखी हुई तारीख नहीं है। जी हाँ, ये हमारे देश और विशेष रूप से महाराष्ट्र के इतिहास में ये जो आज का दिन है, आज की तारीख है, ये एक तरह से कहा जाए तो आत्मसम्मान, आज़ादी और एक नए सवेरे का भी प्रतीक है। आज है विमुक्त जाति दिवस। क्या आप जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने 1871 में एक कानून बनाया था, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, यानी अपराधी जनजाति अधिनियम। और इस कानून के तहत कुछ जातियों के बच्चों को पैदा होते ही अपराधी मान लिया जाता था, उन्हें समाज से अलग थलग कर दिया गया था। लेकिन 31 अगस्त, जी हाँ, 1952 को, यानी आज के दिन, इस काले कानून की बेड़ियाँ हमेशा के लिए टूट गई। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को पूरी तरह खत्म कर दिया और इसी वजह से विमुक्त समुदाय के लोग आज के दिन को अपनी असली आज़ादी का दिन भी मानते हैं। क्या आपको ये जानकारी पता थी? अगर हाँ तो हमें ज़रूर व्हाट्सअप कीजिए 8657661071। आप हमें लैंडलाइन पर भी कॉल कर सकते हैं 4515413254515433।

0: जिंदगी कितनी खूबसूरत है, इस खूबसूरत जिंदगी में अपना रंग मिलाइए और देखिए ये जिंदगी और भी हसीन है। 107.1 FM Rainbow, musically yours.
1: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
2: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू
1: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध शर्तें लागू
2: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।
3: फिर एक बार स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। 9:44 हो चुके हैं और दिन विशेष की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कई सारी दिन विशेष की जानकारियों के साथ मैं जब आई हूँ और आप भी कई सारे मुझे जवाब भी दे रहे हैं, उसके लिए भी आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया है। और ये जो मैं कह रही हूँ ना कि आप जानते हैं, एक और इंटरेस्टिंग खबर है कि पूरे भारत को एक ही समय दिखाने वाली घड़ी की शुरुआत कब हुई थी। अब जबकि मैं बता रही हूँ दिन विशेष, तो आज ही के दिन हुई होगी। तो आज ही के दिन यानी 31 अगस्त 1947 को एक बड़ा फैसला लिया गया था। अब आप कहोगे कि पूरे भारत को एक ही समय की घड़ी मतलब क्या, ऐसा क्या हो रहा था, समय अलग अलग था। जी हाँ, एक फैसला लिया गया था कि हमारे पूरे देश में सिर्फ एक ही टाइम जोन होगा, जिसे हम आज भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ISTकहते हैं। और इससे पहले जानते हैं क्या हाल था। अंग्रेजों के ज़माने में भारत में अलग अलग शहरों का अपना अलग अलग वक्त होता था, क्या आप ये जानते थे। और वक्त तो था उसे, मतलब जैसे मुंबई का टाइम कुछ अलग चल रहा था उस वक्त, तो बॉम्बे थी यानी बॉम्बे टाइम अलग है और कोलकाता टाइम अलग है, ये हाल था। और हमारे देश के उस वक्त के नेताओं और वैज्ञानिकों ने सोचा कि जब देश एक है तो वक्त भी एक होना चाहिए। यानी मुंबई में मैं अगर यहाँ पे 9:46 कह रही हूँ और मुझे कोई चेन्नई में सुन रहा है तो उसे भी तो 9:46 होना ही चाहिए ना। और इसके लिए चुना गया उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर को। और मिर्ज़ापुर वैसे तो आजकल काफ़ी से फेमस है, तो मिर्ज़ापुर के पास से गुजरने वाली देशांतर रेखा को हमारा स्टैंडर्ड टाइम माना गया। तो अगली बार जब आप अपनी घड़ी में सुबह के 8 बजे का अलार्म लगाएं तो याद रखिए उसी वक्त दिल्ली में, राजस्थान में या देश के किसी भी कोने में 8 ही बज रहे होंगे। और ये जो कमाल है ना, ये आज ही के दिन हुआ था। अब क्या कहे, वक्त वक्त की बात है और क्या।

नमस्कार, 51 मिनट हो चुके हैं। चलिए आपको मैं फ्लैशबैक में ले चलती हूँ। साल 1920, इमेजिन कीजिए, और तारीख आज ही की 31 अगस्त, और जगह अमेरिका का डेट्रॉइट शहर। और उस जमाने में अगर लोगों को देश दुनिया की खबर चाहिए

ये होती थी, तो उन्हें अगले दिन सुबह अखबार जो है ना उसके आने का इंतजार करना पड़ता था। अगर रात में कोई बड़ी घटना हो जाए दुनिया में कहीं भी या आसपास भी, तो सुबह से पहले पता चलने का कोई रास्ता नहीं था। और ये बात मैं बता रही हूँ आपको 1920 के दौर तब की। लेकिन उस दिन इतिहास बदला, यानी आज के दिन डेट्रॉइट के एक छोटे से रेडियो स्टेशन 8MK से एक आवाज़ गूंजी, जैसे कि आप मेरी आवाज़ इस वक्त सुन रहे हैं, ठीक वैसे ही। वो दुनिया का पहला रेडियो समाचार यानी रेडियो न्यूज़ बुलेटिन था। और इंटरेस्टिंग है ना ये सब, क्या कहे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं रेडियो पे हूँ, तो ये हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है और आप सभी श्रोताओं के लिए भी है। जो तो सोचिए, लोगों ने पहली बार अपने घर में बैठे बैठे हवा में तैरती हुई आवाज़ से तुरंत खबरें सुनी, बिना अखबार का इंतज़ार किए पल भर में दुनिया उनके कमरों में सिमट आई थी। यानी उन्हें जस्ट बटन ऑन किया और समाचार सुनने मिल गए। और उस दिन से इंसानी कम्युनिकेशन जो है ना वो हमेशा के लिए बदल गया। अखबार पढ़ने के लिए आपको काम रोकना पड़ता है, लेकिन रेडियो, आप गाड़ी चलाते रहो, खाना बनाते रहो या बस आराम कर रहे हो जैसे इस वक्त आप मुझे सुन रहे हो, रेडियो हमेशा आपका सच्चा साथी रहा है। और आज इंटरनेट और सोशल मीडिया के ये जो दौर है ना, इसमें भी रेडियो की वो जादुई आवाज़ और उसकी विश्वसनीयता है वो कम नहीं हुई है। और आज इंटरनेट और सोशल मीडिया का ज़माना कुछ भी हो, लेकिन रेडियो में जो प्यार और मोहब्बत नज़र आती है ना वो कहीं नहीं आती। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताइए।

9:58 हो चुके हैं और ठीक 10 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी मुंबई द्वारा प्रस्तुत इस घंटे के प्रमुख समाचार। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज ही के दिन रेडियो पर समाचार बताने की जो शुरुआत हुई थी, तो मुझे आज समाचार पढ़ने में सच में मज़ा आएगा। और उसके बाद नमस्ते भारत प्रोग्राम आप सुनेंगे, जिसमें क्या होगा खास ये तो आपको प्रोग्राम सुनते वक्त ही पता चलेगा। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, ठीक 10 बजे हम सुनेंगे समाचार और बस सुनते रहिए 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल, जहां पर है आरजे प्रिया आपके साथ।

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल। आइए एक नज़र डालते हैं आकाशवाणी मुंबई द्वारा प्रस्तुत अब तक के प्रमुख समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्राध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर कल बिश्केक पहुंचे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल अमेरिका के शिकागो में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इस अवसर पर श्रीमती सीतारामन ने कहा है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना है। निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग सपोर्ट पोत निपुण को आज मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना में शामिल किया जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन है। निपुण के शामिल होने से नौसेना की गहरे समुद्र में गोताखोरी और पानी के भीतर सहायता क्षमताएं और मजबूत होगी। खेल जगत से समाचार। दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने जीत के साथ शुरुआत की है। भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराया है। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। तो ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। समाचारों के बाद आप सभी श्रोताओं का फिर एक बार स्वागत है। आप सुन रहे हैं 107.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल और 10:02 का वक्त, और ये वक्त होता है कार्यक्रम नमस्ते मुंबई का।

0: जिंदगी कितनी खूबसूरत है, इस खूबसूरत जिंदगी में अपना रंग मिलाइए और देखिए ये जिंदगी और भी हसीन है। 107.1 FM Rainbow, musically yours.
1: जी हाँ, जिंदगी के ये जो सुनहरे पल हैं FM रेनबो के साथ आप गुजारिए और आप गुजार रहे हैं, आपके मैसेजेस हमें आ रहे हैं। नमस्ते भारत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आरजे प्रिया के साथ 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल सुन रहे हैं आप। और आप सभी श्रोताओं के मैसेजेस जो आ रहे हैं उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और तो चलिए नमस्ते भारत प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और आज का दिन वैसे खास है ही, मतलब हम जब भी आते हैं दिन खास होता ही है। तो दरअसल हुआ ये है कि पिछले दो दिनों से पूरे देश में जो खेल और फिटनेस का जुनून सर चढ़कर बोल रहा था ना, आज उस तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी फिटनेस और खेल उत्सव का समापन होने जा रहा है। हाँ, क्या आप ये बात जानते थे? 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की जयंती यानी राष्ट्रीय खेल दिवस से शुरू हुआ ये सफर आज अपने आखिरी और सबसे मज़ेदार पड़ाव पर पहुंच चुका है। क्या थी इस तीन दिन की विशेषता है, क्या क्या हुआ, बताऊंगी आपको बस इस छोटे से ब्रेक के बाद।
2: कॉस्मॉस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित
3: इंटरनेट बैंकिंग,
2: मोबाइल बैंकिंग,
3: व्हाट्सएप बैंकिंग,
2: ईकेवाईसी,
3: एनईएफटी, आरटीजीएस,
2: आईएमपीएस,
3: कॉस्मॉस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
2: यूपीआई जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मॉस बैंक में जरूर होना चाहिए।
3: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
1: ब्रेक के बाद फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। और हम बात कर रहे थे खेल दिवस की, राष्ट्रीय खेल दिवस जो तीन दिन तक शुरू थे और पूरे देश में फिटनेस का जुनून एकदम सिर चढ़कर बोल रहा था। देश के कोने कोने से बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर किसी ने इस उत्सव में अपनी फिटनेस का दम दिखाया है। किसी ने मैराथन में दौड़ लगाई है, क्या आप उनमें से एक थे? मुझे ज़रूर बताइए। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 8657661071। क्या आप इस के बारे में जानते थे? या किसी ने, जैसे कि मैंने कहा, मैराथन में दौड़ लगाई, तो किसी ने योग से दिन की शुरुआत की। देश भर के स्कूलों, कॉलेजों और संस्थानों में फिट इंडिया की शपथ ली गई और हमारे पारंपरिक खेल जैसे कि खो खो, कबड्डी, रस्साकसी जो है, इसका भी रोमांच देखने मिला कई जगह पर और बचपन की यादें ताजा हो गई। और जो लोग सिर्फ सोफे पर बैठकर चिप्स खा रहे थे इन दिनों, उम्मीद है इस उत्सव को देखकर उन्होंने ठान लिया होगा कि अब आगे वो इस तरह के खेल आयोजनों में जरूर शिरकत करेंगे। क्या आप उन्हीं में से एक हैं? हमें जरूर बताइए।

जी हाँ, हम हैं नए और अंदाज क्यों हो पुराना, दिल चाहता है फिल्म से बड़ा ही जोशीला गीत आप सुन रहे हैं और अभी वक्त हो चला है 10:27। नमस्ते भारत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और जैसे कि फिट इंडिया की बात हो रही है तो फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के अंतर्गत रविवार को यानी कल ही की बात है सुबह देश भर में देश के कोने कोने में साइकिल रैलियां निकाली गई और वृद्ध हो बच्चे हो या कोई पैडल मारते हुए फिटनेस का संदेश दे रहा हो ऐसे दृश्य देखने मिल रहे थे और इसका मकसद सिर्फ साइकिल चलाना नहीं था बल्कि साइकिलिंग को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनाना था ताकि हमारा पर्यावरण भी साफ रहे और हमारी सेहत भी एकदम फर्स्ट क्लास रहे। और 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी ये जो फिटनेस खेल उत्सव था इसने साबित कर दिया है कि भारत अब सिर्फ खेल देखने वाला देश नहीं बल्कि खेल खेलने वाला और फिटनेस को अपनी जीवन शैली बनाने वाला फिट भारत बन चुका है और हमारे देश के दिग्गज एथलीटों ने भी इस अभियान में शामिल होकर हम सबका हौसला बढ़ाया है। तो श्रोताओं, उत्सव भले ही ये आज के दिन समाप्त होने वाला है, हो रहा है, लेकिन फिटनेस का ये सफर रुकना नहीं चाहिए क्योंकि फिटनेस कोई 3 दिन का क्रैश कोर्स नहीं है।

0: बस 3 दिन तक कर लिए, खेल लिए और दौड़ लिए, ये ज़िंदगी जीने का तरीका है। और खुद से वादा कीजिए कि रोज़ कम से कम आप किसी न किसी खेल को ज़रूर देखेंगे, क्योंकि याद रखिए फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज़।
1: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
2: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
1: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू, आज ही संपर्क करें।
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

10:40 हो चुके हैं। नमस्ते भारत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। फिटनेस की तो बात हो गई, लेकिन ये तो हम सभी जानते हैं कि आज जो अगस्त महीने का आखिरी दिन है, आज अगस्त महीना हमसे विदा ले रहा है, और लेकिन जाते जाते हमारी दहलीज पर खुशियों की एक पूरी सौगात छोड़कर जा रहा है। कल मैं वहीं सोच रही थी कि मेरा तो 31 तारीख को शो है, और क्या होता है खास ये तो हम बताते हैं, लेकिन क्या होगा खास आने वाले महीने में, मैंने सोचा चलिए इस पर बात की जाए। और कुछ ही घंटों में मतलब कैलेंडर का पन्ना पलटने वाला है और शुरू होने वाला है खुशियों उल्लास और त्यौहार का महीना, यानी सितंबर 2026 पे हम एंटर करेंगे। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि ये जो सितंबर का महीना आ रहा है ढेर सारी खुशियाँ और कहते हैं ना ढेर सारे त्योहारों के साथ आ रहा है, और हर तरफ त्योहारों की महक और एकता का प्रतीक जो कहते हैं ना वो नज़र आएगा। तो आप क्या सोचते हैं इस महीने आपके क्या क्या प्लानिंग्स हैं, गणपति बापा किन आप में से कितने लोगों के घर में विराजमान होने वाले हैं, किस तरह की तैयारियाँ शुरू हुई हैं, वो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। सुनते रहिए 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी मुंबई का FM चैनल।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक के लिए 7.10%, सीनियर सिटीजन के लिए 7.30% मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिच योर लाइफ।

नमस्ते भारत प्रोग्राम अपने आखिरी पड़ाव पर है और नमस्ते भारत में हम जानकारी दे रहे हैं कि सितंबर महीने में क्या क्या होने वाला है खास। और ये तो आप जानते हैं कि 4 सितंबर को पूरे देश में गूंजेगा हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, यानी श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, कान्हा का जन्म है, जो हमें सिखाता है कि प्रेम और कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और ठीक अगले ही दिन यानी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है, जो हमें याद दिलाता है, सीख देता है कि गुरु हमें ज्ञान की रोशनी देते हैं। 14 सितंबर को बापा हमारे घरों में पधार रहे हैं गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर, और इसी

14 सितंबर को पूरा देश हिंदी दिवस भी मनाएगा। क्या गजब का इत्तेफाक है ना। एक तरफ बापा जो सबको एक साथ लाते हैं और दूसरी तरफ हमारी राजभाषा हिंदी जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक दिलों को एक धागे में पिरोती है। कई सारे त्यौहार आएंगे, कई सारी बातें होंगी, कई सारे आरजेस आएंगे, कई सारे शोज होंगे और आपको कई तरह के गाने सुनने मिलेंगे, कई तरह की जानकारियां मिलेगी। तो चलिए फिलहाल आरजे प्रिया को दीजिए इजाजत और इसी वादे के साथ शायद बेहद जल्द मुलाकात होगी। सुनते रहिए 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल। मैं तो चली।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल। मैं हूँ आरजे नमिता आपके साथ और 11 बजे का वक्त हुआ है। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्जकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्यों देशों से अनेकों नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर देश भर के 18 NIFT परिसरों से पास होने वाले छात्रों की डिग्रियां दी जाएंगी। निस्तार श्रेणी के दूसरे ड्राइविंग सपोर्ट पोत निपुण को आज मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन थे। निपुण के शामिल होने से नौसेना की गहरे समुद्र में गोताखोरी और पानी के भीतर सहायता क्षमताएं और मजबूत होंगी। और समाचारों के अंत में, महाराष्ट्र राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार नेपाल में आपदा से प्रभावित महाराष्ट्र के 404 नागरिकों में से अब तक 211 नागरिक सुरक्षित लौट चुके हैं। चीन में फंसे महाराष्ट्र के 69 नागरिक शनिवार को नेपाल पहुंचे थे और उनके आज मुंबई पहुंचने की उम्मीद है। इसी के साथ समाचारों का ये अंक समाप्त होता है। हाय, हेलो, सत श्री अकाल, वणकम, केम छे, कसा काय मुंबई। मैं हूँ आरजे नमिता और प्रोग्राम शुरू हो चुका है। कौन सा ब्रेक फ्री, क्या खास है आज ब्रेक फ्री में? कौन सी ऐसी बात है जो आपको ब्रेक फ्री कर देगी? सुनते रहिए एफएम रेनबो पर, बताएंगे और ब्रेक फ्री भी करवाएंगे। फिलहाल ये वाला गाना।

समंदर से कह दो जरा संभल के लहराए, यहाँ कुछ लोग बैठे हैं अपनी मोहब्बत का शहर बसाए। जी हाँ, ये शहर है हमारा मुंबई। नमस्कार मुंबई, मैं हूँ नमिता आपके साथ, और कार्यक्रम की हम शुरुआत कर ही चुके हैं। ब्रेक फ्री प्रोग्राम है। जब शहर का नाम मुंबई हो तो वहाँ ब्रेक के लिए सबसे खास जगह कौन सी होती है? जी हाँ, आपके जहन में भी वही नाम आया होगा, नरीमन पॉइंट, या यूँ कहें कि नरीमन पॉइंट से लेकर मरीन ड्राइव या पॉइंट से लेकर चौपाटी तक का सफ़र इतना खूबसूरत होता है कि क्या कहें, कितने ही दुख क्यों ना हो। पर समुंदर की तरफ मुंह करके जब हम खड़े होते हैं तो ये किनारे हमेशा ही आपको एक ब्रेक दे देते हैं, और यादगार बनाने के लिए सिर्फ किनारा ही काफ़ी नहीं होता है। बॉलीवुड में भी इन किनारों का इस्तेमाल किया गया है ताकि ये जो यादें हैं या ये जो मंजर है इसको कैद कर लिया जाए। तो आज ब्रेक फ्री में वो गाना जो आपको ले चलेगा समुंदर के किनारे, ख़ासतौर पर मुंबई के समुंदर के किनारे। कौन कौन सी मूवीज़ हैं आपके जहन में आ गई होंगी जिन जिन गानों की यहाँ पिक्चराइजेशन हुआ है, मुंबई की ही क्या बात करें, समुंदर के किनारे जितने गाने पिक्चराइज हुए हैं उन सबको अपने जहन में उतार लीजिए और लिख भेजिए कहाँ, 8657661071। बने रहिए समुंदर और हमारे साथ FM रेनबो पर।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना।
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध। शर्तें लागू।
1: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।

मुंबई की सड़कें मंजिल तक पहुंचाती हैं, लेकिन समुद्र किनारे की सड़कें अक्सर इंसान को खुद तक पहुंचाती हैं। नरीमन पॉइंट की बात कर रहे हैं, ब्रेक फ्री प्रोग्राम है, मैं हूं नमिता। जहां समुंदर ने फिल्मों को कहानी दी, कहते हैं मुंबई में दो चीज़ें कभी नहीं रुकती, एक समुंदर और दूसरा सपने देखने वालों का सिलसिला। और जब इन दोनों का मिलन हो जाता है तो बनता है सिनेमा। हाँ, शहर खत्म होता हुआ दिखाई देता है जब हम खड़े होते हैं समुंदर किनारे, लगता है ना। नरीमन पॉइंट पे खड़े होकर देखा ही होगा, लग रहा होगा कि यहाँ से जो है धरती ख़त्म हो जाती है, बस ये लास्ट पॉइंट है। इसका नाम नरीमन पॉइंट की जगह लास्ट पॉइंट डाल सकते हैं। वेल, मुंबई का वो हिस्सा जहाँ समुद्र के सामने खड़े होकर आपको लगता है कि शहर पूरा मेरे पीछे है और मैं सबसे आगे, है कि नहीं। और ऐसी एक गाना भी है जो समुद्र के किनारे बिल्कुल बहुत ही बखूबी निभाया गया है, ये है आज मैं ऊपर, खामोशी द म्यूजिकल का ये गाना है, आपको ज़रूर सुनवाऊंगी। लेकिन आपने कभी गौर किया है दोस्तों कि फिल्मों में प्यार का कन्फेशन अक्सर महंगे रेस्टोरेंट्स में होता है, कभी बारिश में होता है, कभी रेलवे प्लेटफॉर्म पर होता है, और कभी समुंदर के सामने। क्यों? क्योंकि समुंदर के सामने इंसान के पास छिपाने के लिए बहुत कम रह जाता है। वैसे पॉइंट की ये बातें वो ज़रूर समझ रहे होंगे जो अपने साथी को लेकर इस वक्त पॉइंट पे बैठे हों और लहरों का मज़ा ले रहे हों। बने रहिए ऐसी ही बातों के लिए FM रेनबो पर, मैं हूँ नमिता।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: जी हाँ, उल्टे चलें या सीधे चलें, लेकिन समुंदर किनारे जब भी चलें, बड़ा ही गहराई से चलें, बड़े ही समझ सोच के चलें। और मौसम इतना अच्छा है, और इस वक्त अगर आप जाते भी हैं पॉइंट पे, तो वाकई आप भूल जाएंगे कि इस वक्त जो है क्या आपके जीवन में उथल पुथल चल रही है। जो सामने उथल पुथल चलती है वो इतनी रोमांटिक होती है, इतनी अच्छी होती है, कि जब हम वो नज़ारे को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदरूनी जितने भी क्या कहेंगे वेव्स चल रही होती है, सब शांत हो जाती है। कुछ पलों के लिए ही सही, पर हम एक छोटा सा ब्रेक अपने ही शहर में ले सकते हैं। आप क्या कहते हैं, लिख भेजिए 8657661071 पर। और अगर हम बात करें पॉइंट की, या फिर इस सिनेमैटिक कनेक्शन की, जो समुंदर के साथ सिनेमा का है, तो उसमें मुन्ना भाई एमबीबीएस भी एक लोकप्रिय फिल्म रही है, जिसमें समुंदर के बहुत सारे सीन हैं, और बहुत फेमस हो गया हमारे मुंबई का ये जो सीन है। एक्चुअली जो नरीमन पॉइंट है, वो पॉइंट इस वजह से भी कई लोगों की नज़र में आ गया है कि नहीं। आपने इस मूवी को अच्छे से देखा होगा, तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट को आप पकड़ लेंगे। वेकअप सिड मूवी में भी ऐसा ही कुछ पॉइंट के बारे में या दिखाया गया है, या कहीं ना कहीं फिल्माया गया है। एक फिल्म आई थी 1985 में, मेरी जंग। ये फिल्म जो थी, इसमें एक गाना था, बोल बेबी बोल रॉक एंड रोल, आपने ज़रूर सुना होगा, अभी फिर सुनवाने वाली हूँ। फिलहाल ये जो फिल्म थी, इसमें एक शूट भी जो किया गया था, वो स्ट्रीट पे किया गया था, पॉइंट का जो स्ट्रीट है वहाँ पे, और कई सारी कार्स वहाँ पे खड़ी की गई थी। कहा जाता है कि 100 से ज़्यादा कारों का जो है इंतज़ाम किया गया था पॉइंट पर, डांस का सीक्वेंस बनाने के लिए। तो लोकेशन पे परमिशन भी ली गई थी, ट्रैफिक का मैनेजमेंट भी देखा गया था, सिक्योरिटीज़ भी उस गाने के लिए बड़ी एक चुनौती थी कि कैसे उसको किया जाए, कैसे एक्शन को लाया जाए, और एटीट्यूड के साथ डांस भी हो जाए और बात भी बन जाए, तभी तो ऐसा वाला गाना बना है। आपने अगर इसका पिक्चराइजेशन देखा होगा तो ज़रूर आपके जहन पे बैठ गई होगी। फिलहाल इसके भी पीछे जाएंगे रेट्रो स्टाइल में, आपको बताएंगे कौन सी फिल्म है जिसमें ऐसे ही कुछ पुरानी फिल्मों में भी कुछ गाने जो हैं वो हुआ करते थे, जो बहुत फेमस हैं, और जो पॉइंट से लेकर चले हैं। कौन सी हीरोइन है जो अपने हीरो के हाथ में हाथ डाल के जा रही है और बारिश हो रही है, ये जो सीन है मैं आपको बता रही हूँ। जल्दी से लिख भेजिए कौन से गाने का ये सीन है, बहुत फेमस है। 8657661071 पर।
1: Welcome, friends, to the show that never ends. I've taken the chance to make you dance. You will move your feet and groove to the beat. So then, which beat would you like? Dosto, kaun sa dance pasand karenge aap? Rumba?
2: No!
3: No!
1: Samba?
3: No!
1: Rumba?
3: No!
1: Samba?
3: No!
1: Tequila?
3: No!
1: Tango?
3: No!
1: Charleston?
3: No!
1: Polka?
3: No!
1: No?
3: No!

0: बैंकिंग,
1: EKYC,
0: NEFT, RTGS,
1: IMPS,
0: कॉस्मोस रूपे और वीसा डेबिट कार्ड,
1: UPI जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

जी हाँ, हमारे पॉइंट पर ना इंतज़ार की भी बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी रहती हैं. बहुत से लोग हैं इंतज़ार करते हुए दिखते हैं अपने साथी के लिए, और ये इंतज़ार के पल बड़ी आसानी से कट जाते हैं. इस गीत में तो भले ही उनका इंतज़ार कट नहीं

आओ, शायद वो पॉइंट पे नहीं खड़े हो। अगर हम नरीमन पॉइंट पे खड़े हैं तो इंतज़ार भी बहुत रोमांटिक हो जाता है। फिलहाल थोड़ा रेट्रो हो जाते हैं। 1975 की एक फिल्म है छोटी सी बात, इसमें एक बहुत प्यारा गीत है जाने मन तेरे दो नयन, ये आपने ज़रूर सुना होगा। आशा भोसले और यशोदास की आवाज़ें हैं, सलील चौधरी का संगीत, योगेश के बोल हैं। इस गीत कि नरीमन पॉइंट पे शूटिंग हुई थी ऐसा उल्लेख मिलता है। फिलहाल आज की मुंबई की बात करें, फास्ट फास्टर फास्टेस्ट, लेकिन उस दौर में रोमांटिक सिनेमा की बात करें तो स्लो स्माइल साइलेंस आई कांटेक्ट, इसलिए शायद गीत का नाम भी ऐसा था। और बोल के साथ साथ गीत में जो भाव आए हैं वो भी उठ के आए हैं, बहुत क्या कहेंगे, गहराई वाले शब्द हैं, गहराई वाला गाना है, बड़े दिल से सुनिएगा। और वो गाना जो मैंने आपसे कहा था वो आपने जज कर ही लिया, वो बिल्कुल सुनाने वाली हूँ, रिमझिम गिरे सावन, जिसमें अमिताभ बच्चन जो हैं वो जा रहे हैं किसके साथ, मौसमी चटर्जी जी के साथ। दोनों ही की केमिस्ट्री जो है ना बहुत फेमस है, और इस गाने पर रीमेक भी बना, कई सारे लोगों ने इसमें रील्स भी बनाई हैं, और बहुत खूबसूरत गीत है। और जब पानी गिर रहा हो ना उस वक्त इस गाने को सुने तो बात ही कुछ और हो जाती है। फिलहाल सिनेमा के पॉइंट की बात करें तो नरीमन पॉइंट ही नहीं, कई सारे समुंदर इसमें शामिल हैं, कई सारे लेक्स इसमें शामिल हैं, जो सिनेमा में अपनी एक अलग आइडेंटिटी रखती हैं। बात करें 2009 की वेकअप सिट फिल्म में भी जो है कहीं ना कहीं ये मुंबई की सब बैकग्राउंड्स जो हैं वो दिखाए गए थे, और मुंबई खुद एक कैरेक्टर के रूप में भी कई कई फिल्मों में सामने आया है। ज़रूरी नहीं होता है कि हर चीज़ जो है अभिनेता या अभिनेत्री करती है, कई बार जगह भी अपनी एक भाषा बोलती है। सिनेमा जगहों को सिर्फ फ्रेम में नहीं रखता, वो हमारी मेमोरीज में रख देता है। कभी छोटी सी बात, कभी मेरी जंग का रॉक एंड रोल, कभी मुन्ना भाई वाली मुंबई की मस्ती, कभी वेकअप सिट की बारिश में। मुंबई वही है, समुंदर वही है, लेकिन हर फिल्म उसे एक नया अर्थ दे जाती है। और अगली बार जब आप नरीमन पॉइंट पर खड़े हों तो सिर्फ समुंदर मत देखिएगा, थोड़ा गौर कीजिएगा, शायद कोई पुराना बॉलीवुड सीन आपकी आंखों के सामने से चल रहा हो। क्योंकि कुछ जगह हम देखने नहीं जा पाते, कुछ जगह हमारी देखी हुई हो जाती है और हम भूल जाते हैं, लेकिन उन जगहों की यादें हमारे जहन में हमेशा हमेशा के लिए बस जाती हैं।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पे. मैं हूं नमिता. पेश है इस घंटे के मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान के बिश्केक के फ्रेंड्स ऑफ इंडिया संवाद में हिस्सा लिया. उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बिश्केक स्थित स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की. नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा है कि ये वर्तमान में महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव आ रहे हैं जिसमें समुद्री क्षेत्र तेजी से प्रतिस्पर्धा की ओर जा रहा है. मुंबई में INS निपुण को भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने के बाद वे बोल रहे थे. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी 3M से भारत में अनुसंधान और विकास, उन्नत विनिर्माण और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया है. उन्होंने कहा है कि भारत तेजी से प्रौद्योगिकी, नवाचार और वैश्विक विनिर्माण के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा है और वैश्विक कंपनियों के लिए यह व्यापक अवसर उपलब्ध है. और समाचारों के अंत में, अमेरिका ने कल रात हुर्मुज जलडमरू मध्य में स्थित लारक द्वीप पर ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया. अमेरिकी सेना ने बताया कि ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के सैनिकों को हुर्मुज जलडमरू मध्य में रॉकेट दागने की तैयारी करते देखे जाने के बाद उन्होंने दो ईरानी लॉन्चरों को निशाना बनाया. ईरान के सरकारी प्रसारक ने बताया कि इस हमले में कई ईरानी सैनिक और नागरिक मारे गए और घायल हुए हैं. इसी के साथ समाचारों का यह अंक समाप्त होता है. पेश है कार्यक्रम म्यूजिक कैफे.

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो, मैं हूं आरजी नमिता। म्यूजिक कैफे का सफर जारी हो चुका है, शुरू हो चुका है और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और दोपहर के 2:07 और 55:56 हो चुके हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल हम भी आगे बढ़ जाते हैं और बढ़ के हम जाते हैं उस थाली के पास जिसमें चटनी, पापड़ और अचार भी होता है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि हर थाली में एक ही फ्लेवर अगर आपको रोज़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं एक पार्ट जो है वो मिसिंग रह जाता है। भले ही कितना ही स्वादिष्ट खाना हो पर हम रोज़ एक जैसा खाना तो नहीं खा सकते। बिल्कुल ऐसे ही हमारे सिनेमा में होता है, रोज़ लव स्टोरीज़ देखना हर कोई पसंद नहीं करता, कहीं ना कहीं फ्लेवर चेंज करने का मन होता है। और जब बात हो हॉरर और सस्पेंस की तो बात कुछ और ही होती है, यानी डर तो होता ही है, साथ में दिमाग भी चलना तेज़ हो जाता है। रात के सन्नाटे में अगर अचानक किसी कमरे का दरवाज़ा आपने खुला हुआ देख लिया तो आप क्या करेंगे? दरवाज़ा बंद करेंगे। लेकिन जब आप हॉरर फिल्म देख लेंगे तो आप ये दरवाज़ा बंद नहीं कर पाएंगे और पहले ये सोचेंगे कि शायद हवा से खुल गया है या शायद कितना टाइम हुआ है, पहले वो देख लेती हूँ। अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके पीछे से कुछ आवाज़ आ रही, ध्यान से सुन लेती हूँ फिर उठती हूँ, होता है ना। तो डर के आगे जीत है, लेकिन फिर भी हमारे पास वो वाले गाने हैं जो कुछ हॉरर फिल्मों से, कुछ सस्पेंस फिल्मों से हम लेकर आए हैं आपके लिए। और अगर आप भी हॉरर और सस्पेंस के फ़ैन हैं तो जल्दी से लिख भेजिए, आपका नाम ज़रूर लेंगे 8657661071। और आपकी फेवरेट वाली हॉरर फिल्म कौन सी है ये भी लिख के भेजिएगा। जी हाँ, बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जिनको बहुत पसंद है हॉरर एंड सस्पेंस, और जहाँ दोनों मिल जाते हैं तो फिर बात ही कुछ और हो जाती है। और अगर सस्पेंस ना हो, सिर्फ हॉरर हो ना, तो मज़ा ही नहीं आता। कहीं ना कहीं वो सस्पेंस बना रहना चाहिए, यानी कि डरावनी आवाज़ें आनी चाहिए लेकिन डरावनी शक्लें नहीं दिखें, तब तक डर बना रहता है। जैसे ही वो शक्लें दिख जाती है ना, सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है कि नहीं। बने रहिए ऐसी चटपटी बातों के लिए एफएम रेनबो पर, म्यूज़िक कैफ़े।

बड़ा पुरदर्द गाना है ये, इसकी रचना भी बड़ी मुश्किल से की मैंने। समझ में नहीं आता था कि इस गाने के लिए कौन सा राग चुनूं। एक दिन सोचते सोचते अचानक मुझे ख्याल आया कि इस गाने के लिए सिर्फ नंद राग ही मुनासिब होगा। लता मंगेशकर और डायरेक्टर राज खोसला मेरे पास ही बैठे थे, उन्होंने भी कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक है, ये इसी राग में अच्छा बनेगा। बस फिर क्या था, रोशनी दिखाई देने लगी, गाना सुरों में ढलने लगा।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक के लिए 7.10%, सीनियर सिटीजन के लिए 7.30% मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिच योर लाइफ।
2: जी हाँ, म्यूज़िकल ईयर्स FM रेनबो 107.1 और हम म्यूज़िक कैफ़े में आज उस माहौल में हैं जो यदा कदा ही हमको मिलता है, और जब मिलता है तो कभी कभी बहुत मज़ा आता है। लेकिन ये कहा जाए कि हर टाइम हॉरर और सस्पेंस हम देखना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 1949 की एक फिल्म थी महल, आपको याद हो, एक हवेली, एक रहस्यमय अतीत, एक आदमी जिसे लगता है कि वो पहले भी इस जगह को देख चुका है, और फिर एक ऐसी महिला का रहस्यमय प्रवेश जो मानो किसी पुराने जन्म की कहानी लेकर आई। फिल्म का सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या वो आत्मा है, पुनर्जन्म है, या इंसान के दिमाग का भ्रम। और यहीं से हिंदी सिनेमा में हॉरर ने सिर्फ डरना नहीं, रहस्य पैदा करना शुरू किया। आएगा, जी हाँ, ये वाला गाना भी आएगा, आप तक पहुंचेगा। सुनते रहिए FM रेनबो। और कोई हॉरर फिल्म जिसने आपने आपके जहन में या आपके मन में एक जगह बना ली हो, आप जब भी हॉरर की बात कहीं पे सुनते हैं, कहीं कोई पोस्टर देखते हैं, कुछ हॉरर सीक्वल आपके साथ हो रहा होता है, तो आपको वो फिल्म याद आती है, बिल्कुल हमको लिख भेजिए। कहाँ? 8657661071 पर।

हाँ भाई, तो हॉरर गाने सुनने के बाद कहीं ना कहीं आपके जहन में भी बहुत सारी ऐसी फिल्मों के नाम आ गए होंगे जो हॉरर सी फीलिंग देते हैं, सस्पेंस की फीलिंग देते हैं. गुमनाम हो, अंधाधुन हो, तुम्बाद हो, कितनी भी बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो आपके जहन में घूम रही हैं और मेरे स्क्रीन पर भी घूम रही हैं. बिल्कुल पढ़ूंगी, लेकिन अभी इसको देते हैं छोटा सा विराम और NCERT उमंग इस वक्त आपके सामने हाजिर है. और लीजिए, पेश है स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम NCERT उमंग.

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार, स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार। श्रोताओं, हमारा विशेष धन्यवाद स्वीकार कीजिए, क्योंकि पिछले सप्ताह के प्रसारण में हमने मोबाइल, एआई और परिवार जैसे विषयों पर बात की थी,
2: और आप सबसे निवेदन किया था कि इन विषयों पर कुछ पंक्तियाँ और स्लोगन लिख भेजें। तो सुनते हैं एक स्लोगन
3: जो हमें लिखा है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू, लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू ने। लिखते हैं,
2: पाँच

0: अगस्त विषय मोबाइल पर स्लोगन जमाना हमसे है हम जमाने से नहीं, मोबाइल हमसे है हम मोबाइल से नहीं, ये हमारा सेवक है स्वामी नहीं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस शानदार स्लोगन के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले सप्ताह संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
0: गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिमबाई मानिकपुरी।
1: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला, आरती कुमारी और ओम कुमार जी लिखते हैं, ये भी जानिए मैं भारतीय स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया जी पर आधारित जानकारी सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा।
0: उनके जीवन संघर्ष और अदम्य देशभक्ति के बारे में जानना बेहद प्रेरणादायक रहा। देश के प्रति उनका समर्पण और राष्ट्र प्रेम वास्तव में सराहनीय है। कार्यक्रम की पूरी टीम को इस सुंदर प्रस्तुति के लिए हार्दिक धन्यवाद। राजाजी नगर बेंगलोर से अखिला प्रसाद और एनआर प्रसाद ने मोबाइल विषय पर स्लोगन भेजते हुए लिखा है,
1: डिजिटल तकनीक का उपयोग ज्ञानवर्धन और कार्य को गति देने के लिए करें, नकारात्मक कार्यों के लिए कभी नहीं। मोबाइल को बच्चों का खिलौना न बनाएं।
0: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर।
0: ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी अंगारे ने शब्द का अर्थ बताते हुए लिखा है, वैमानिकी का अर्थ है विमान उड़ाने से संबंधित विज्ञान।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबकी प्रतिभागिता के लिए। हम हरदम प्रयास करते हैं कि उमंग कार्यक्रम के द्वारा आपको रोचक से रोचक जानकारी दें
0: जी
1: और मनोरंजक शैक्षिक कार्यक्रम भी सुनाएं। तो अब सुनते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था, थर्मामीटर या ज्वर मापी यंत्र का आविष्कार किसने किया था?
0: थर्मामीटर का आविष्कार गैलीलियो गैलीली ने किया था। इसे आधुनिक रूप दिया था 1714 में डेनियल फेरनहाइट ने।
1: हमारा अगला प्रश्न था, आंग किसे कहते हैं और ये किस जनजाति में प्रचलित है?
0: आंग का अर्थ होता है राजा, मुखिया या वंशानुगत प्रमुख। ये नागालैंड की कोयांक जनजाति की सर्वोच्च उपाधि है।
1: और सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, डार्क स्काई रिजर्व किसे कहते हैं?
0: डार्क स्काई रिजर्व उस विशेष जगह को कहते हैं जहाँ कृत्रिम प्रकाश का इस्तेमाल नहीं के बराबर होता है, ताकि वहाँ के आकाश को वास्तविकता में देखा जा सके।
1: हमारा अगला प्रश्न था, मौसिनराम और मेघालय की खासी जनजातियों का मुख्य भोजन क्या है?
0: मौसिनराम और मेघालय की खासी जनजातियों का मुख्य भोजन चावल और जादोह है।
1: और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, राजस्थान के किस गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है?
0: राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी इलाके के फलोदी और उसके आसपास के गांवों में गर्मियों के दिनों में तापमान बेहद ऊंचा पहुंच जाता है, लगभग 50 से 52 डिग्री सेल्सियस।
1: श्रोताओं एक बहुत ही खास निवेदन है आप सबसे, ध्यान से सुनिएगा कि मात्र सुविचार ना भेजें। इन दिनों सुविचारों की बाढ़ आ रही है
0: जी।
1: सुविचार भेजना आसान है लेकिन प्रश्नों के उत्तर देना और कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना जरा कठिन।
0: सुविचार जरूर भेजें लेकिन कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया भी अवश्य दें। और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना चाहते हैं या पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर जाइए, वहां आपको कक्षा 9 तक की सारी पुस्तकें ध्वनि रूप में उपलब्ध हो जाएंगी।
1: तो श्रोताओं अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न। प्रश्न है, सम्राट अशोक किस वंश के सम्राट थे? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: सम्राट अशोक किस वंश के सम्राट थे?
1: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है सीइंग विदाउट सीइंग।
0: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करते हुए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति सामान्य बच्चों के मन में जागरूकता को बढ़ाता है।
2: Little Long Shangla returned from the school. She opened the door quietly. She kept her bag on the table quietly. Her mother looked at her.
3: Aunt Shangla, you're very quiet today. Did anything happen in the school?
4: Yes, Ava. A new boy came to our school. He sits in our class.
3: Yes.
4: The teacher helped him sit in the front desk. He wears black glasses. He cannot see. He will come every day. How will he do things?

0: Finish your biscuits and milk. Then we will play a new game.
1: Yes, let us play.
2: She tied a scarf over Ong Shangla's eyes.
0: Now, tell me, what do I hold in my hand?
1: How can I? My eyes are closed. I can't see.
0: You can find out. Try it. What do I hold?
2: Ong Shangla touched it.
1: It is something soft. A flower.
0: Yes. But what flower is it? Smell it.
1: It is a rose.
0: Good. Now try another thing. What do I hold?
1: I know. It is the bell. The small bell that gives such a musical sound. I can hear it, Ava.
2: Ong Shangla took the bell and shook it herself.
0: Smart girl. What do I hold now? Do you know?
2: Ong Shangla touched it.
1: It is a glass.
2: She put one finger slightly into the glass.
1: A glass of water?
0: Are you sure? It could be milk or juice.
2: Ong Shangla tasted it.
1: Oh, it is not water. It is orange juice.
0: Good girl. Now, I will remove the scarf. You must tell what is in front of you.
2: She took off the scarf. Ong Shangla blinked and looked at her.
1: It is you, Ava. I see you. That was a wonderful game, Ava.
0: So, Ong Shangla, if a child cannot see, there are other ways of finding out things. But the child may have some difficulties. I hope all of you will be friends with the new boy.
1: Yes, Ava.
0: Good girl.
2: Ong Shangla calls her mother Ava. What is the word for mother in your mother tongue? Close your eyes. Imagine that when your eyes are closed, how would you identify water, flower, sugar, direction of a clapping sound?
0: Note to the teacher. Sensitize children to the challenges faced by the differently abled.
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम Seeing Without Seeing.
4: अभी कुछ दिन पहले मेरे मिनी टेम्पो की हेडलाइट बंद हो गई. मैकेनिक बोला, भाई रात को मत चलाना. हमने सोचा यार, इतना तो चलता है, रोज का रास्ता है, मैं जानता हूँ.
5: आगे एग्जिट नहीं दिखा और बाइक वाले ने इंडिकेटर भी नहीं दिया.
6: चलता है बोलने से किसी की जिंदगी भी रुक सकती है.
7: वाहन चलाने से पहले हमेशा ये सुनिश्चित करें कि हेडलाइट ठीक से काम कर रही हो. सही रोशनी से रास्ता भी साफ दिखाई देता है और आसपास चल रहे वाहन भी दिखाई देते हैं.
3: और इस कार्यक्रम के बाद आप सुनते हैं कार्यक्रम वो आखिरी पत्ता.
8: ये कार्यक्रम प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक व उपन्यासकार ओ हेनरी द्वारा रचित कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतरण है, जिसमें बताया गया है कि यदि मन में कोई डर या कुंठा बैठ जाए तो उसके परिणाम बहुत नकारात्मक हो सकते हैं. कार्यक्रम में बड़ी मार्मिकता से मानवीय संवेदनाओं को भी स्पर्श किया गया है.
9: साथियों नमस्कार.
10: नमस्कार साथियों.
9: साथियों आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी की पूरक पाठ्य पुस्तक मोमेंट्स के एक पाठ की कथा.

0: नाट्य प्रस्तुति, शीर्षक है द लास्ट लीफ यानी आखिरी पत्ता।
1: ये कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी द्वारा 1905 में लिखी गई थी। ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी। तो आइए सुनते हैं ये कथा नाट्य प्रस्तुति।
0: अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। इसी शहर का एक बहुत सुंदर कस्बा है जो ग्रीनिच विलेज के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही रमणीक और सुरम्य गांव है। इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे,
1: ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने कैनवस पर उतार सकें और दुनिया के सामने ग्रीनिच गांव की खूबसूरती का नजारा पेश कर सकें। इसी ग्रीनिच गांव में एक दिन दो लड़कियां रहने के लिए आईं। वो दोनों चित्रकार थीं और वो भी वहां के सौंदर्य को अपने कैनवस पर उतारना चाहती थीं। एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से।
0: इन लड़कियों में से एक का नाम था जॉन्सी और दूसरी का नाम था सू। दोनों साथ साथ रहने लगी और उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी।
2: अरे जॉन्सी, तुम इतनी सुबह सुबह अपना पेंट ब्रश और कैनवस लेकर कहाँ चल दी?
3: ओ सू, ग्रीनिच के सुहाने सूर्योदय को अपने कैनवस पर उतारना जो है।
2: अरे हाँ, तो चलते हैं और यहाँ की सुंदरता को घर लेकर आते हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।
3: यस।
1: साथियों, वो मिली तो थी वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे शरद ऋतु शुरू हो गई और अब भयंकर सर्दी का मौसम था। उस भयंकर शरद ऋतु में अचानक एक अजनबी ने ग्रीनिच गांव में प्रवेश किया और उसने अपने ठंडे हाथों से लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया। उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों। बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिनमें एक जॉन्सी भी थी। वो गंभीर रूप से बीमार थी और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
0: उसके मित्र सू उसकी बहुत सेवा करती थी। एक दिन जब डॉक्टर उसे देखने आया तो उसने नोट किया कि जॉन्सी उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, बस हां हूं कर रही है। डॉक्टर ने एक खास बात नोटिस की कि जॉन्सी बस खिड़की की ओर लगातार देखती जा रही थी।
1: साथियों, डॉक्टर ने उधर भी देखा लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सू से कहा,
4: सू
2: जी,
4: जॉन्सी तुम्हारी दोस्त है।
2: जी हाँ
4: भाई, मुझसे तो वो ठीक से बात नहीं कर रही। जरा उससे पूछकर मालूम करो कि उसे ऐसी क्या तकलीफ है।
2: जी डॉक्टर साहब।
4: और वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है?
2: मैं पूछती हूँ।
0: दूसरे दिन सू ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जॉन्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को घूरते हुए कुछ बुदबुदा रही है।
1: वो धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
5: 15, 40
2: क्या?
0: थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना,
5: 13, 12, 11। ओह जॉन्सी, अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है सू।
1: सू ने जॉन्सी को झकझोरा और पूछा,
5: क्या गिन रही हो? 11, 10, 9। ओह, उस दिन वो करीब 100 थे, लेकिन सू, अब वो बहुत कम हो गए।
2: क्या कम हो गए हैं?
5: पहले मुझे गिनने में मुश्किल होती थी, लेकिन

0: लेकिन हाँ, अब मैं इन्हें गिन सकती हूँ, आसानी से गिन सकती हूँ। सो
1: सू ने फिर से बाहर देखा। खिड़की के सामने बस एक आईवी क्रीपर का पेड़ था जो पतझड़ की मार से बहुत बुरी हालत में था, लगभग अधमरा सा। बस कुछ पीली पत्तियां दिखाई दे रही थी। सू ने उसे दोबारा झकझोरा और पूछा,
2: जॉनसी, उस दिन क्या 100 थे जब कम हो गए हैं? तुम क्या गिन रही हो?
0: 6, now it's 6, 5, 4, oh!
2: जॉनसी, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लगने लगा है। खिड़की में तो कुछ नहीं है। तुम क्या गिन रही हो? उधर नहीं, मेरी तरफ देखो जॉनसी।
0: Only 4.
2: मेरी तरफ देखो।
0: So, only 4. Oh, अब सिर्फ 3 बचे हैं।
2: क्या 3 बचे हैं? What's 3, dear?
0: 3 पत्तियां।
2: पत्तियां?
0: हाँ, खिड़की के पास जो आईवी क्रीपर का पेड़ है ना सो,
2: हाँ,
0: मैं उसकी पत्तियां गिन रही हूँ। मुझे लगता है,
2: क्या लगता है?
0: यही कि बस अब 3 पत्तियां बची हैं, और जिस दिन आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना, उस दिन
2: क्या जॉनसी?
0: उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
2: ओह नो, ये क्या कह रही हो तुम जॉनसी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है।
0: नहीं, ये तय है सू कि उस दिन मेरी मौत हो जाएगी। सू,
2: हाँ
0: सू, अब सिर्फ 3 पत्तियां बची हैं, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास सू।
2: ओ जॉनसी,
1: साथियों, सू ने उसे बहुत समझाया। उसी दिन डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, सारे तर्क दिए, लेकिन जॉनसी मानने को तैयार नहीं थी।
3: अचानक उस दिन कुछ अजीब सा हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति जॉनसी को देखने आया। सभी उस बूढ़े व्यक्ति को सनकी और लगभग पागल समझते थे।
1: उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर बेयरमैन। वो बहुत दिनों से ग्रीनिच गांव में रह रहे थे।
3: वो चित्रकार थे। बहुत बार उन्होंने चित्रकारी में असफलता देखी थी और लोगों का मजाक भी सहा था। वो घर घर घूमकर हमेशा लोगों से कहा करते थे,
4: मैं अपनी चित्रकारी से एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ जो अब तक नहीं बना पाया, लेकिन बनाऊंगा जरूर।
1: लोग उसे देखते ही उससे कतराने लगते थे। लोग उस पर हंसते और कहते, देखो मास्टरपीस वाला बुढ़ा आ रहा है। जब वो जॉनसी को देखने के लिए आए तो सू ने उन्हें बताया कि वो किस वजह से पत्ते गिन रही है।
3: इतने में जॉनसी ने अपनी दुर्बल आवाज में फिर से गिना,
0: अब सिर्फ 2 पत्तियां ही बची हैं।
1: मिस्टर बेयरमैन ने बड़ी खामोशी से सू को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा,
4: जॉनसी, अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा।
1: इतना कहकर तेज कदमों से मिस्टर बेयरमैन वहां से चले गए।
3: अब मात्र 2 पत्तियां ही बची थी। दूसरे दिन की शाम 1 पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जॉनसी ने देखा अब सिर्फ 1 ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,
0: आखिरी पत्ता अब शायद

0: गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें बाकी हैं। आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है, बस गिरने ही वाला है।
1: साथियों, जॉन्सी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया, पर वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही और इस दौरान बर्फबारी के साथ पतझड़ के मौसम की बारिश शुरू हो गई। साए साए आंधी चलने लगी। रात भर रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।
2: जैसे ही सुबह हुई, जॉन्सी ने सू से कहा,
0: सू, मेरी दोस्त।
3: हाँ जॉन्सी।
0: जरा वो खिड़की खोल दे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता वहाँ है या नहीं। खोल जरा खिड़की सू।
1: सू की तो मानो रूह ही कांप गई थी। कांपते हुए हाथों से डरते डरते सू ने खिड़की खोली। जॉन्सी ने खिड़की की ओर देखा, लेकिन आश्चर्य, वो पत्ता अभी भी गिरा नहीं था। सुहानी सुबह थी, मंद मंद हवा चल रही थी, आकाश मानो पूरी तरह से धुला हुआ था, चमकता हुआ सूरज निकल आया था। वो आखिरी पत्ता हवा में कांपता हुआ अभी भी वहीं का वहीं था। अचानक जॉन्सी को कुछ हुआ और उसने सू को बुलाया और कहने लगी,
0: सू।
3: हाँ जॉन्सी।
0: सू, ऐसा लगने लगा है कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी। मैं नहीं मरूंगी।
3: हाँ बिल्कुल,
0: अब मैं नहीं मरूंगी सू।
3: बिल्कुल जॉन्सी।
0: हाँ, इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।
3: पत्ता?
0: हाँ, मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा। देखो ना, वो पत्ता अभी भी वही है।
3: हाँ, हाँ, मैंने देखा, मैंने देखा जॉन्सी, मैंने देखा।
2: हाँ, दो दिन और बीत गए, वो पत्ता वही का वही था। जॉन्सी अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
4: कुछ थैंक गॉड, अब इसकी तबीयत अच्छी हो गई है, ये लड़ाई जीत जाएगी।
2: जॉन्सी मुस्कुराई और उसने खिड़की की ओर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था, पर डॉक्टर के जाने के बाद सू ने कहा,
3: जॉन्सी, कैसा महसूस कर रही हो?
0: बेहतर।
3: ये लो कॉफी पियो।
0: थैंक यू
3: जॉन्सी। एक बुरी खबर भी है।
0: क्या हुआ?
3: वो मिस्टर बेरमन, उनकी कल अस्पताल में मौत हो गई।
0: कौन बेरमन? वही बुरे कलाकार?
3: हाँ।
0: ओह, जो मुझे उस दिन देखने आए थे?
3: हाँ वही।
0: ओह, जो कहते थे मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, वही ना?
3: हाँ वही मिस्टर बेरमन।
0: ओह गॉड,
3: उनकी हालत दरअसल उस दिन बहुत खराब हो गई थी जब तुमने वो आखिरी पत्ता देखा था। जॉन्सी,

0: अब मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ।
1: क्या?
0: क्या कभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि सारे पत्ते इस पतझड़ में गिर गए, पर वो आखिरी पत्ता
1: क्यों नहीं गिरा?
0: हाँ,
1: क्यों नहीं गिरा? आखिर क्या हो सकता है? सू
2: जॉन्सी सोच में पड़ गई। फिर सू ने कहा,
0: जॉन्सी, जिस दिन वो आखिरी पत्ता बचा था ना, उसके दूसरे दिन किसी ने मिस्टर बैरमन को हमारी ही खिड़की के पास बहुत बुरी हालत में पाया। उनके जूतों में बर्फ भरी हुई थी और उनके पेंट ब्रश और कैनवस इसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास पड़े पाए गए थे, जहां वो रात भर पेंटिंग करते रहे।
1: पेंटिंग?
0: हाँ।
1: कैसी पेंटिंग?
0: जो पत्ता तुम देख रही हो वो कुछ और नहीं लेकिन मिस्टर बैरमैन की पेंटिंग है, जो उन्होंने आखिरी पत्ते के गिरने के बाद उस कड़कड़ाती सर्दी वाली रात में उस पेड़ पर चिपका दी थी।
1: ओह, तो वो पेंटिंग है?
0: हाँ।
1: असली पत्ता नहीं है?
0: नहीं।
1: लेकिन सू, कितना असली लग रहा है।
0: हाँ जॉन्सी, बिल्कुल असली है ना, मास्टरपीस?
1: हाँ सू, मास्टरपीस। वो कहा करते थे कि मैं कभी ना कभी मास्टरपीस बनाऊंगा, और सू, उन्होंने बना दिया।
0: हाँ जॉन्सी,
1: आखिर बना दिया उन्होंने मास्टरपीस। सू,
0: हाँ, उन्होंने बना दिया।
1: उन्होंने बचा दिया मुझे, उन्होंने मेरी जान बचा ली। सू, बचा लिया उन्होंने मुझे, उन्होंने मरने से बचा लिया मुझे। सू, मास्टरपीस, मास्टरपीस, आखिरी पत्ता, आखिरी पत्ता।
3: डबडबाई आंखों से जॉन्सी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था जो अब मास्टरपीस बन गया था।
2: ग्रीनिच गांव के कलाकार एक एक करके आ रहे थे और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे। जॉन्सी और सू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे, मानो वे अश्रु अविरल बहकर उस बूढ़े कलाकार को श्रद्धांजलि दे रही हूं।
4: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम वो आखिरी पत्ता। आशा है कि ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। तो अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
5: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु, चेतना के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार, नमस्कार।
6: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
7: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल है 107.1 MHz पर।

ये है आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे, बने रहिए यहीं एफएम रेनबो के साथ, क्योंकि समाचारों के उस पार होगा प्रोग्राम हिट एंड हॉट।

जवाब के बाद अपनी पसंद बताते हैं। उन सभी के लिए सवाल ये है कि तीन लफ्जों में आपको बताना होगा, जांचना होगा, पता करना होगा कि कौन सी फिल्म का नाम है, कौन सी फिल्म की बात हो रही है। तो तीन लफ्ज वो ये हैं कि फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन है, गुंडा है, ऑस्ट्रेलिया है। ये तीन शब्दों से बिल्कुल पहचान जाइए कौन सी मूवी है। लिख भेजिए कहाँ, यहीं FM रेनबो पर 8657661071 पर। फिलहाल हमारे साथ जो हमारे लिसनर्स जुड़े हैं उनके नाम एक बार ले लेते हैं। हितेंद्र दास जी हमारे साथ हैं, विजेंद्र जी हमारे साथ हैं, प्रणव शिंदे जी हमारे साथ हैं, लालगिरी गोस्वामी जी हमारे साथ हैं, मिंटू जी हमारे साथ हैं, अजय जी हमारे साथ हैं, अभिजीत जी हमारे साथ हैं, साथ ही जॉन जी, मेहर अरोरा जी राजस्थान से हैं, इब्राहिम जी हैं, संदीप कुमार जी हैं, बाबा जी हैं दादर से, अशोक ठाकुर जी, राकेश माथुर जी, शुभदा जी, संजय जी, फिरोज सिग्नापुरी जी और दिलीप पाटिल जी, दत्तात्रेय जी, दत्ता केदार जी, साथ ही नागेश जी हमारे साथ हैं बारामती से, अमर पाटिल जी अलीबाग से, अशोक पाटिल जी वर्ली से, मुकेश जी देहरादून से, शुभलक्ष्मी जी हमारे साथ हैं, यशवंत जी हैं, अंजू जी, काजल जी, प्रमोद जी और साथ ही प्रदीप जी हैं, श्रेया राउत जी हैं और महेश जी हमारे साथ हैं, सुरेश जी हमारे साथ हैं और हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने अपने नाम नहीं लिख भेजे हैं और उनका नंबर है, तो जल्दी से अपने नाम लिख भेजिए क्योंकि 1:30 के उस पार फिर हम आपका नाम ज़रूर पुकारेंगे। बने रहिए। फिलहाल पहला वाला गाना जो है ये आ रहा है अंजू जी की पसंद पे, अंधेरी से ये हमें लिख भेजती हैं और किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में ये गाना।

इस गाने को पसंद करने वाली हमारी श्रोता थी काजल कक्कर जी, चेंबूर से हमें लिख भेजा था उन्होंने ये गाना। और हमने पूछा था सवाल कि आपको बताना था फिल्म का नाम, फीमेल स्पोर्ट्समैन है, गुंडा है, ऑस्ट्रेलिया है, तीन वर्ड्स में आपको जज करना था कौन सी फिल्म का नाम है। तो सही जवाब है चक दे इंडिया। ये फिल्म का नाम जल्दी से जल्दी किसने पता कर लिया है या जांच लिया है, तो वो हैं दिलेश वंजारी जी भंडारा से और प्रणव शिंदे जी, दोनों ही के जवाब ऑलमोस्ट एक ही साथ आए हुए हैं। सो दोनों को बहुत बहुत बधाई। आगे बढ़ते हैं और तीन शब्द आपको दे रही हूँ, और वो तीन शब्द हैं जमशेदपुर, फादर और रनिंग। इन तीनों को मिलाकर या इन तीनों लफ्ज़ों से कोई फिल्म आपके जहन में आती है तो लिख भेजिए 8657661071 पर। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, दिल है कि मानता नहीं फिल्म का ये गाना आ रहा है अशोक पाटिल जी और राजेश मोरे जी की पसंद पर।

इसी गीत के साथ एक छोटा सा विराम देंगे हिट एंड हॉट प्रोग्राम को। समाचार होंगे, 10 मिनट बाद फिर आपसे मुलाकात होगी। आपकी पसंद के गाने और मेरे सवाल का जवाब दोनों आपका इंतज़ार करेंगे। आप भी बने रहिए हमारे साथ FM रेनबो पर।

म्यूजिकली और एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़, मैं हूँ आरजे नमिता। और हिट एंड हॉट प्रोग्राम में हमने आपसे पूछा था एक सवाल। सवाल ये था कि जमशेदपुर, फादर, रनिंग, इन तीनों ही लफ्ज़ों को मिलाकर कौन सी फिल्म आपके जहन में आती है। तो सही जवाब है उड़ान फिल्म। और सही जवाब जल्दी से जल्दी देने वाले हमारे दोस्त हैं पंकज जी अमरावती से, वैदही जी और राकेश माथुर जी, आप सभी को बधाइयाँ। और बहुत से लोग उड़ान और मसान में कन्फ्यूजन हो गया था, तो बहुत सारे लोग हमारे ऐसे लिसनर्स हैं जिन्होंने प्रयास किया और बहुत अच्छा प्रयास किया, लेकिन पास आकर रह गए। फिलहाल बहुत से

सही जवाब भी आए लेकिन देरी से आए, इसके लिए आपको क्षमा चाहती हूँ। अभी हाल ही में हमारे साथ जो जुड़े हैं हितेंद्र दास जी असम से जुड़े हैं और मुन्ना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यवतमाल से लिखते हैं हमें। कई सारी फिल्मों को पसंद किया है, कई सारे गानों को पसंद किया है इन्हीं सब ने, लेकिन इस वक्त जो है आ रहा है किसकी पसंद का गाना, संजय दर्शन जी की पसंद का गाना आ रहा है और उसके बैक टू बैक अशोक ठाकुर जी मुलुंड से जो पसंद करते हैं उनकी पसंद का गाना बजेगा। बने रहिए एफएम रेनबो के साथ, दिल से दिल तक।

ये गाना आप सुन रहे थे अशोक ठाकुर जी मुलुंड से पसंद करने वाले हमारे श्रोताओं की पसंद पर। फिलहाल कुछ और हमारे श्रोतागण जो जुड़े हैं अपना नाम सुनना चाहते हैं तो हितेंद्र दास जी असम से हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही मंगेश जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं, मुकेश कश्यप जी जुड़े हैं और इस वक्त जो गाना आप अभी सुनने जा रहे हैं दिलीप पाटिल जी की पसंद का गाना है और उसके बाद चेतन कुमार जी की पसंद का गाना आप सुन सकेंगे। बने रहिए यहीं FM रेनबो के साथ।

तो दोस्तों इस वक्त हमारे साथ दो और नाम जुड़े हैं, मेहर अरोरा जी और साथ ही अभिजीत जी हमारे साथ जुड़े हैं। मेहर जी हमें राजस्थान से सुन रहे हैं और अभिजीत जी ने अपना पता हमें बिल्कुल नहीं बताया। फिलहाल आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी नाम लिखें अपने गांव का, अपने देश का, ज़रूर नाम लिखें। कहीं हमारे लिसनर्स हैं जो आउट ऑफ इंडिया भी हमें सुन रहे होते हैं, तो बिल्कुल आप सभी के नाम लेते हुए मुझे हार्दिक खुशी होती है। जिनके पसंद के गाने नहीं बजवाए गए उनसे क्षमा चाहती हूँ और मेरे जाने का वक्त हो गया है। आप सभी के हंसते रहने, मुस्कुराते रहने की फरमाइश बिल्कुल करती हूँ, चाहत करती हूँ और इच्छा है मेरी कि आप हमसे यूं ही जुड़े रहें, ऐसे ही हमारे सवालों के जवाब भी दें, हमारे साथ हंसे खेले गाएं, आपकी पसंद के गीत यहीं बजे और बजाएं। फिलहाल अभी मुझे यानी नमिता को दीजिए इजाज़त। टाटा बाय बाय। कुछ ही पलों में आप समाचार सुन सकेंगे।

0: Uttarakhand, eastern Madhya Pradesh, Jharkhand, and all northeastern states till tomorrow. The weather agency said thunderstorms and lightning conditions will continue over Andaman and Nicobar Islands, Andhra Pradesh, Gangetic West Bengal, Odisha, Tamil Nadu, Puducherry, and Karaikal till tomorrow. A strong weather system is active over Madhya Pradesh, with the eastern parts of the state seeing the biggest impact. In some areas, dam gates had to be opened while flood conditions have made the situation difficult in several places.
1: Heavy rain has picked up again in eastern Madhya Pradesh, with rising rivers and full dams causing trouble in several areas. In Shahdol, rising water in the Bansagar Dam forced the gate to be opened for some time. In Chitrakoot, the Mandakini River rose nearly 30 feet. The Gorgi Dam broke, flooding several areas, while strong currents damaged the big bridge at Ramghat. As the water receded, mud, garbage and slush were left on roads and inside homes. Chief Minister Dr. Mohan Yadav visited Chitrakoot yesterday. He reviewed the flood situation and met people at relief camp. The weather department has issued a heavy rain alert today for Rewa, Mauganj, Mehar, Sidhi, Umaria, Shahdol, Dindori, Anuppur, Mandla, Sivni and Balaghat. Abhinav Goyal, Akashwani News, Bhopal.
0: Following severe flooding in Nepal and heavy rainfall in the catchment areas, the water levels of the Gandak and Kosi rivers have risen in Bihar. To regulate the river flow, all 36 gates of the Valmiki Nagar barrage and 25 of the 56 gates of the Birpur barrage at Kosi have been opened. In football, India under 20 men's national team will begin their AFC under 20 Asian Cup 2027 qualifiers campaign against Syria at the Dostlik Stadium in Tashkent today. Drawn in Group B alongside hosts Uzbekistan and Bangladesh, India enter the qualifiers with the objective of returning to the AFC under 20 Asian Cup for the first time since 2006. In women's cricket, Bangladesh will take on Indonesia in the Group B match of the Women's T20 Asia Cup in Dubai today. The match is scheduled to begin at 8 p.m. Indian Standard Time. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold bilateral meetings with leaders of Shanghai Cooperation Organization member states in Bishkek today. Government notifies all six pillars of Semicon India Program 2.0 with a total outlay of 1.27 lakh crore rupees. President Draupadi Murmu calls upon NIFT students to adopt global outlook while remaining rooted in the country's rich cultural heritage. Indian Navy commissions INS Nippon, a special designed platform to support wide spectrum of diving and underwater operations. Relief and rescue operations intensify in Nepal after deadly flash floods. Death toll rises to 903 and over 4,000 people are still missing. With that, we end the midday news.
2: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। सरकार ने 1,27,000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों को अधिसूचित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निफ्ट के विद्यार्थियों से देश के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। भारतीय नौसेना ने गोताखोरी और गहरे पानी के नीचे के अभियानों में सहायता के लिए INS निपुण को बेड़े में शामिल किया। नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान तेज। मृतकों की संख्या बढ़कर 903 हुई। 4,000 से अधिक लोग अब भी लापता। और फुटबॉल में भारत आज ताशकंद में AFC अंडर 20 एशियाई कप क्वालिफाइंग अभियान में आज सीरिया से मुकाबला करेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान में आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें रूस, ईरान और किर्गिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठकें शामिल है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिश्केक में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ आत्मीय संवाद किया। प्रधानमंत्री ने भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय की ऊर्जा, उत्साह और महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान श्री मोदी ने आज बिश्केक स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। यह श्रद्धांजलि महात्मा गांधी के विचारों की प्रासंगिकता और उनकी सार्वभौमिक स्वीकारिता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
2: इससे पहले उज्बेकिस्तान की दो दिन की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कल ताशकंद में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ बातचीत की। दोनों नेता भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उज्बेकिस्तान में भारत की संस्कृति, इतिहास, भाषाओं और विचारों के प्रति लोगों का लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने तमिल भाषा और संस्कृति में बढ़ती रुचि के साथ तिरुक्कुरल के महत्व का भी जिक्र किया।
4: सैकड़ों साल पहले तमिल भाषा में एक तिरुक्कुरल जो लिखा गया है, आज भी जीवन के सब क्षेत्रों में वो बहुत ही प्रेरणा देने वाला और अध्यात्म भी है, फिलोसॉफी है, व्यवहारु ज्ञान भी है। जब आप 80 साल मना रहे हैं तो क्या ये कल्पना कर सकते हैं कि उज्बेक में तिरुकुरल का यहाँ के लैंग्वेज में अनुवाद हो? सचमुच में वो यहाँ आपके ज्ञान के अंदर संवर्धन करेगा।
2: सरकार ने देश में चिप विनिर्माण तंत्र को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ सेमिकॉन कार्यक्रम के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आगामी वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में भारत की हिस्सेदारी करीब 10% हो सकती है। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में बड़ी भूमिका निभाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री वैष्णव ने सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों की अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि सरकार का जोर भारत को वेफर निर्माण से लेकर चिप उत्पादन तक वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने पर है।
5: वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग को भरोसा है कि आने वाले दशकों में भारत बड़े निवेश के लिए एक प्रमुख केंद्र बनेगा। इसका प्रमाण हमें सेमिकॉन 1 के तहत मंजूर की गई परियोजनाओं से मिलता है। इनमें कई इकाइयों ने भूमि पूजन के केवल 13 महीने के भीतर व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया है। इसी तेज गति ने वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग का भारत पर भरोसा और मजबूत किया है।
2: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
6: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
2: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि ये लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि फैशन और वस्त्र प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं।
7: फैशन टेक्नोलॉजी भी ऐसा क्षेत्र है जिसमें विश्व स्तर पर भारत की भूमिका बढ़ाने को अपार संभावना है। आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। इस प्रयास में आप स्मरण रखें कि आपकी सोच वैश्विक हो, लेकिन आपकी जड़ें अपने मिट्टी की विशिष्टता और जीवन मूल्यों से जुड़े। इस तरह आप न केवल सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनेंगे, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में भी अपना योगदान दे सकेंगे।
2: वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प में युवाओं से योगदान देने का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को रोजगार देने वाला बनने का प्रयास करना चाहिए।
7: आप ऐसे समय में फैशन टेक्नोलॉजी के विभिन्न विधाओं के स्नातक बन रहे हैं जो भारत आत्मनिर्भरता के अनेक आयामों पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे देश पहले की तुलना में कहीं अधिक

0: आत्मविश्वास के साथ विश्व पटल पर अपनी भूमिका को विस्तार दे रहे हैं। मुझे बताया गया है कि 20 साल पहले महिलाओं की संख्या केवल 20% था। अभी 4000 करीब जो बच्चे यहाँ उपस्थित है उनमें से 85% महिलाएं हैं।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी 3M से भारत में अनुसंधान और विकास, उन्नत विनिर्माण और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से प्रौद्योगिकी, नवाचार और वैश्विक विनिर्माण के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा है और वैश्विक कंपनियों के लिए यहाँ व्यापक अवसर है। एक रिपोर्ट।
2: वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वित्त मंत्री ने अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में आयोजित G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से इतर 3M के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम ब्राउन के साथ वार्ता की। बैठक में इस बात पर विचार किया गया कि भारत अब केवल बड़े उपभोक्ता बाजार तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्नत विनिर्माण, प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार आधारित उत्पादन का वैश्विक मंच बनता जा रहा है। श्रीमती सीतारामन ने 3M से स्थानीयकरण बढ़ाने, अनुसंधान और विकास गतिविधियों का विस्तार करने तथा नई प्रौद्योगिकियों के विकास में अधिक निवेश करने का आग्रह किया। 3M के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम ब्राउन ने भारत में उपलब्ध विशाल प्रतिभा संसाधन की सराहना की। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: भारतीय नौसेना ने आज मुंबई के नौसेना गोदी में निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग सपोर्ट पोत INS निपुण को अपने बेड़े में शामिल किया। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा कि INS निपुण पानी के नीचे चलाए जाने वाले विशेष अभियानों में महत्वपूर्ण साबित होगा।
2: आज हम तेजी से बदलती रणनीतिक परिस्थितियों के दौर से गुजर रहे हैं। समुद्री क्षेत्र में चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। भविष्य के खतरों का सटीक अनुमान हमेशा संभव नहीं है, लेकिन संभावित खतरों के लिए तैयार रहना और उनसे प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता विकसित करना आवश्यक है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि खतरा कहीं भी और कभी भी सामने आए, हम उसका समय पर प्रभावी ढंग से सामना करें।
1: इसे विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के बाद मसौदा जारी कर दिया है। सूची के अनुसार 97 लाख से अधिक मतदाता इसमें शामिल हैं, जबकि 47 लाख से अधिक मतदाताओं का नाम सूची से हटाया गया है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया है कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं है वे 30 सितम्बर तक Form 6 और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दावे दाखिल कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची नवम्बर में जारी की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि इस वर्ष दिसंबर में बांग्लादेश के साथ समाप्त हो रहे 30 वर्षीय गंगा पद्मा जल बंटवारे समझौते के नवीनीकरण से पहले राज्य के हितों की तरफ ध्यान दिया जाए। राज्य सरकार ने नए समझौते में पर्यावरण संरक्षण और भविष्य की जल आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने की मांग की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है। 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। सभी 8 प्रभावित जिलों में राहत और बचाव अभियान तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
4: नेपाल में 5 से अधिक जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़े ढांचों में 900 से अधिक श्रमिकों के फंसे होने की आशंका है। भारत और अन्य देशों के विशेषज्ञों के सहयोग से बचाव दल त्रिशूली 3A सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़ी सुरंगों में तलाश की जा रही है। तिब्बत में मृतकों की संख्या 16 हो गई है, जबकि 546 लोग लापता है। भारतीय बचाव दल चिली में और लांगटांग में पनबिजली संयंत्रों पर नेपाल की सेना के साथ मिलकर काम कर रहा है। नेपाली सेना के प्रवक्ता राजा राम बसनेट ने बताया कि अत्यधिक मलबे के कारण सुरंगों तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। लगभग 21,000 सुरक्षाकर्मी राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: इस बीच नेपाल में भीषण बाढ़ और जल ग्रहण क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी स्थित बीरपुर बैराज के 56 में से 25 गेट

0: खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है। मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति ने हालात को जटिल बना दिया है। एक रिपोर्ट।
1: पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। शहडोल में बाणसागर डैम में पानी बढ़ने से कुछ समय के लिए डैम के गेट खोलने पड़े। गोरगी बांध फूटने से कई इलाकों में पानी भर गया, जबकि तेज बहाव ने रामघाट के बड़े पुल को भी नुकसान पहुंचाया। मौसम विभाग ने आज रीवा, मऊगंज, मेहर, सीधी, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: इस बीच मौसम विभाग ने आज ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। कल तक बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और सभी पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान है। फुटबॉल में भारत की अंडर 20 टीम आज ताशकंद में एएफसी अंडर 20 एशियन कप चीन 2027 क्वालिफायर अभियान की शुरुआत सीरिया के साथ मुकाबले से करेगी। मेजबान उज्बेकिस्तान और बांग्लादेश के साथ ग्रुप बी में शामिल भारतीय टीम 2006 के बाद पहली बार एएफसी अंडर 20 एशियन कप में वापसी के उद्देश्य से क्वालिफायर में उतर रही है। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट के ग्रुप बी मुकाबले में आज बांग्लादेश का सामना इंडोनेशिया से होगा। दुबई में यह मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एक बड़े उलटफेर में सर्बिया के नोवाक जोकोविच पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। उन्हें अर्जेंटीना के मारियानो नावोन से हार का सामना करना पड़ा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0112331 0481 और 2371717। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। सरकार ने सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों को अधिसूचित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निफ्ट के विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। भारतीय नौसेना ने गोताखोरी और गहरे पानी के नीचे के अभियानों में सहायता के लिए आईएनएस निपुण को अपने बेड़े में शामिल किया। नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान तेज। मृतकों की संख्या बढ़कर 903 हुई, 4000 से अधिक लोग अब भी लापता। और फुटबॉल में भारत आज ताशकंद में एएफसी अंडर 20 एशियाई कप क्वालिफाइंग अभियान में सीरिया से मुकाबला करेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

गुड इवनिंग दोस्तों, शाम के 5:07 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो लव योर जिंदगी। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी और आज की शाम होने वाली है थोड़ी फिटनेस वाली, थोड़ी फनी वाली और थोड़ी ऐसी जिसे सुनकर शायद आपको भूख भी लग जाए। अब आप सोच रहे हैं फिटनेस और खाने का क्या कनेक्शन है? अरे भाई, कनेक्शन है और बहुत मज़ेदार है। दुनिया में ऐसे ऐसे फिटनेस इवेंट्स होते हैं जहां लोग सिर्फ कैलोरीज बर्न करने के लिए नहीं दौड़ते, बल्कि दौड़ने के पीछे एक बहुत ही डिलिशियस रीज़न होता है। तो आज हम जानेंगे फिटनेस की दुनिया के कुछ ऐसे मज़ेदार इवेंट्स जहां रनिंग, फन और फूड का कॉम्बिनेशन आपको डेफिनेटली सरप्राइज करेगा। तो कहीं जाइएगा मत, क्योंकि आज लव यू जिंदगी में बात होगी फिटनेस की, लेकिन बिल्कुल बोरिंग तरीके से नहीं। 107.1 MHz FM Rainbows. Stay tuned to Dil Se Dil Tak.

कुणाल कांचावाला की आवाज़ में सुना आपने ये गाना फिल्म गुजारिश से 100 ग्राम जिंदगी। दोस्तों, लव योर जिंदगी में बात कर रही हूँ फिटनेस की। फिटनेस का नाम सुनते ही अगर आपके दिमाग में सिर्फ जॉगिंग, ट्रेडमिल और एकदम स्वेटिंग आ जाती है, तो आज अपना इमेजिनेशन थोड़ा बदलना होगा, क्योंकि दुनिया में कुछ ऐसे मज़ेदार इवेंट्स भी होते हैं जहाँ कंसेप्ट बिल्कुल अलग है। यहाँ पहले खाना नहीं मिलता कि आप आराम से खाकर फिर दौड़े, या ना ही ऐसा कि दौड़ पूरी करने के बाद आपको कोई रिवॉर्ड मिलेगा। यहाँ तो मामला ही कुछ और है। दौड़ते दौड़ते खाना पकड़ना है, उसे ग्रैब करना है, और फिर चलते भागते उसका मज़ा भी लेना है। अब सोचिए, एक तरफ फिटनेस का जुनून, दूसरी तरफ खाने का टेम्पटेशन, और बीच में आप। तो सवाल ये है दोस्तों, अगर खाने के लिए दौड़ना पड़े, खाने को पकड़ना पड़े और फिर रनिंग के बीच ही इसे खाना पड़े, तो क्या आप ऐसी इवेंट में पार्टिसिपेट करना पसंद करेंगे? कैलोरीज बर्न करने और फूड एंजॉय करने का अंदाज बिल्कुल हटके है। ये कैसी इवेंट है, ये मैं क्या बात कर रही हूँ, जानने के लिए बने रहिए एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़। बताती हूँ इन गानों के बाद। कीप लिसनिंग टू एफएम रेनबो, दिल से दिल तक।

0: setting sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, come on, heal me.
1: आतिफ असलम और अलीशा चनोई की आवाज में सुना आपने ये गाना फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी से। दोस्तों 5:30 हो चुके हैं और अब वक्त आ गया है इस मज़ेदार फूड फिटनेस कंसेप्ट का राज खोलने का। मैंने आपको बताया ना कि दुनिया में कुछ ऐसी दौड़ भी होती है जहां सिर्फ फिनिश लाइन तक पहुंचना ही चैलेंज नहीं होता, बल्कि खाने का भी पूरा मामला बीच में चल रहा होता है। मैं आपको ले चलती हूँ सबसे पहले बीकानेर, राजस्थान के बीकानेर में, जहाँ रनिंग और कचौड़ी का अजब गजब कॉम्बिनेशन है। सोच कर ही एनर्जी आ गई ना। यहाँ पे ऐसा है कि मैराथन होती है जिसमें ट्रक आगे चलता है जिसमें बहुत सारी कचौड़ियाँ हैं, आपको पीछे पीछे चलना है, भाग के वो कचौड़ियाँ पकड़नी है जितनी भी आपके हाथ में आ सके या फिर जितनी भी आप खा सकते हैं, और खाते खाते फिनिश लाइन तक पहुँचना है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यहीं पर होता है, मैं आपको लंदन लेके चलती हूँ। तो वहाँ पर पेस्ट्री रन होता है, कचौड़ी की जगह वहाँ पे पेस्ट्री होती है, तो आपको दौड़ते दौड़ते पेस्ट्री पकड़नी है। फ्रांस ले चलती हूँ तो वहाँ पे क्रोआसो रन होता है या क्रोआसो वो पेस्ट्री, तो आपको दौड़ते दौड़ते वो पेस्ट्री पकड़नी है और फिर खाते खाते फिनिश लाइन तक पहुँचना है। अब इसे आप रनिंग इवेंट कहिए, फूड फेस्टिवल कहिए, या कैलोरीज और क्रेविंग्स के बीच की फ्रेंडशिप कहिए। इसी पर से दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ कि ऐसी कौन सी फूड आइटम है जिसके लिए आप दौड़ना पसंद करेंगे, बताइए मुझे 8657661071 पर। कीप लिसनिंग टू एफएम रेनबो, दिल से दिल तक।

निखिल पॉल जॉर्ज की आवाज में सुना आपने ये गाना फिल्म बर्फी से, मैं क्या करूं। दोस्तों 5:40 के ऊपर हो चुका है और मैं आपसे पूछ रही थी कि ऐसी कौन सी खाने की आइटम है जिसके लिए आप मैराथन कर सकते हैं और मुझे बहुत ही दिलचस्प आंसर्स मिले हैं। वैदे ही ने लिखा है स्वीट्स ओनली, इमरती और गुलाब जामुन के लिए वो दौड़ सकती है। और पंकज मोहड ने लिखा है अमरावती से, भजिए के लिए वो बहुत सारा दौड़ सकते हैं। वेल, बहुत ही अच्छी बात है। विजया लक्ष्मी शेट्टी कहती है कि एनी टाइम बनाना ऐसे पकड़ के खाने में बहुत मजा आएगा। फिरोज सिंगनपुरिया साहब कहते हैं कि गुलाब जामुन के लिए वो दौड़ सकते हैं। वैसे इंडियंस को स्वीट बहुत पसंद है। दोस्तों खाने की बात तो हो गई और आपको पता है ना, खाना और गाना जीवन में खुशी लाता है। तो अगले दो गाने आ रहे हैं आपके लिए। कीप लिसनिंग टू FM रेनबो, लव यू जिंदगी। आप मेरे साथ सुन रहे हैं कीप लिसनिंग टू दिल से दिल तक।

आयुष्मान खुराना की आवाज में सुना आपने ये गाना फिल्म विकी डोनर से। दोस्तों 6:15 पर आप सुनेंगे अंदाजे बयां और 7:10 पर आपका फेवरेट प्रोग्राम हम तुम, जिसमें आप अपने फरमाइशी गाने भेजेंगे और मैं आपकी रिक्वेस्ट प्ले करूंगी। पर फिलहाल लव यू जिंदगी में अगले दो गाने। कीप लिसनिंग टू एफएम रेनबो, दिल से दिल तक।

दोस्तों लव यू जिंदगी में बस ये आखिरी गाना 6:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और 6:15 पर अंदाजे बयां में फिर से मुलाकात होगी आपसे। कीप लिसनिंग टू एफएम रेनबो, दिल से दिल तक।

नमस्ते दोस्तों, 6:20 हो चुकी है और दिन भर की भाग दौड़ के बाद अब शाम धीरे धीरे अपनी खामोशी ओढ़ रही है और शायद यही वो वक्त है जब दिल थोड़ा ज़्यादा महसूस करता है। कुछ यादें, कुछ बातें, कुछ चेहरे और कुछ एहसास जिन्हें हम दिन की रोशनी में शायद नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन शाम होते ही वही एहसास दिल के दरवाजे पर दस्तक देने लगता है। तो आइए दोस्तों, इस खूबसूरत शाम में अल्फाजों की इस दुनिया में चलते हैं जहां हर शेर एक कहानी कहता है, हर गजल एक एहसास बन जाती है और हर आवाज़ सीधे दिल तक पहुंचती है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी और आप सुन रहे हैं अंदाज़े बयां ऑन 107.1 MHz FM रेनबो पर।

वेलकम बैक दोस्तों, एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आप सुन रहे हैं अंदाज़े बयां। दोस्तों, गज़ल की सबसे खूबसूरत बात शायद यही है कि इसमें हर सुनने वाला अपनी एक अलग कहानी ढूंढ लेता है। एक ही शेर किसी को मोहब्बत याद दिलाता है, किसी को बिछड़ना और किसी को वो शख्स जिसका जिक्र आज भी आपका दिल चुपचाप करता है। कभी कभी हम बहुत कहना चाहते हैं पर कुछ कह नहीं पाते, लेकिन अल्फाज साथ भी नहीं देते तब, और फिर अचानक कोई गज़ल बजती है और लगता है जैसे किसी ने हमारे दिल की बात हमसे पहले ही लिख दी हो। तो आइए इसी एहसास को महसूस करते हुए कुछ और खूबसूरत अल्फाज और सुरों के साथ आगे बढ़ते हैं।

बेगम अख्तर की आवाज में सुनी आपने ये गजल। दोस्तों, कभी कभी ना हम सोचते हैं कि बस अब बहुत हो गया, जिंदगी ने जो दिखाना था दिखा दिया, दिल ने जो सहना था सह लिया, और अब इससे ज्यादा बुरा शायद कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर जिंदगी एक नया पन्ना खोल देती है, और शायद इसी एहसास को कुछ यूं कहा गया है, कसर किसने नहीं छोड़ी बस कुरेदना बाकी था, कसर किसी ने नहीं छोड़ी बस कुरेदना बाकी था, अब तेरे बाद मेरा बिखरा घर समेटना बाकी था। सोचा इससे ज्यादा बुरा और क्या ही देख सकता हूँ, फिर याद आया तुझे किसी और के साथ देखना भी बाकी था। कुछ दर्द ऐसे होते हैं दोस्तों, जिन्हें हम भुलाने की कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन दिल उन्हें आखिरी बार महसूस करना कभी नहीं छोड़ता। आप सुन रहे हैं अंदाज़े बयां ऑन एफएम रेनबो

कभी कभी एक गजल वो कह जाती है जो हम पूरी जिंदगी किसी से नहीं कह पाते, बस कुछ अल्फाज, कुछ सुर और दिल की एक पूरी कहानी। इसी खूबसूरत एहसास के साथ मैं सुनवाने जा रही हूँ आपको अंदाजे बयां की आखिरी गजल। ठीक 7 बजे आप सुनेंगे समाचार और 7:10 पर हम तुम में फिर से मुलाकात होगी। आप अपने फेवरेट फरमाइशी गाने मुझे भेज सकते हैं 8657661071 पर। कीप लिसनिंग टू FM रेनबो, दिल से दिल तक।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically Yours.
1: म्यूजिकली योर्स दोस्तों, जिसका इंतजार आपको था वो कार्यक्रम आ चुका है। हम तुम 107.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम रेनबो आप सुन रहे हैं मेरी यानी कि लक्ष्मी के साथ। और मैंने आपको पिछले पड़ाव में ही नंबर दे दिया था कि किस नंबर पर आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, 8657661071 पर। तो हम तुम की शुरुआत करते हैं अजय सखारे इंदौर से। सुनना चाह रहे हैं याराना फिल्म का गाना छूकर मेरे मन को। और अशोक पाटिल सुनना चाह रहा है आनंद फिल्म से कहीं दूर जब दिन ढल जाए। चलिए हम तुम की शुरुआत करते हैं हिंदू गानों से। कीप लिसनिंग टू एफएम रेनबो, दिल से दिल तक।

हम तुम सुन रहे हैं आप एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पर। 7:22 हो चुके हैं और अगली फरमाइश मैं सुनवाने जा रही हूँ फिरोज सिंगनपुरिया, जो सुनना चाह रहे हैं हम दिल दे चुके सनम से, ये गाना चांद छुपा बादल में, और विजेंद्र घटोल अकोला से फिल्म दिल जले से सुनना चाहते हैं हो नहीं सकता। मैं सुनवाने जा रही हूँ ये दो गाने बैक टू बैक। कीप लिसनिंग टू एफएम रेनबो, दिल से दिल तक।

हम तुम आप सुन रहे हैं मेरे साथ। अब अगली फरमाइश मैं सुनवाने जा रही हूँ प्रमोद चिंचोलकर सुनना चाह रहे हैं फिल्म डर से तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, और अरविंद कुलकर्णी सुनना चाह रहे हैं मैंने प्यार किया फिल्म से आया मौसम।

एसपी बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की आवाज में सुना आपने ये गाना फिल्म मैंने प्यार किया से। और दोस्तों, हम तुम में बस आखिरी दो फरमाइश में बजा सकती हूँ, और आखिरी दो फरमाइश में पंकज मोहोड़ सिटीलाइट फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं, वो मैं सुनवाने जा रही हूँ। और मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़ सोल्जर फिल्म का गाना सुनना चाह रहे हैं, तो मैं ये दो गाने अंत में बस प्ले करने वाली हूँ दोस्तों। बाकी सारे दोस्तों की फरमाइश मैं कोशिश करूँगी अगली बार ज़रूर से पूरी करूँ। और रीटा स्टूडियो में आ चुकी है, ठीक 8 बजे आप सुनेंगे रॉक विथ जॉक, और मुझे दीजिए इजाज़त। और ये आखिरी दो गाने मैं आपके लिए प्ले करने जा रही हूँ। कीप लिसनिंग टू FM रेनबो, दिल से दिल तक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यापार, ऊर्जा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, भारत यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के हर प्रयास का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ बातचीत में नौवहन की स्वतंत्रता और नागरिक सुरक्षा पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं से भी मुलाकात की। वे कल शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे पर समझौते से लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मृतकों की संख्या 900 से अधिक हुई। उपकरणों की कमी से राहत और बचाव कार्य प्रभावित, 4,247 से अधिक लोग लापता। और फुटबॉल में एफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 26वें वार्षिक शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों, व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस के बीच सहयोग का नई ऊंचाइयों तक पहुंचना बहुत संतोष का विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
1: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को

0: सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
0: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को खेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम मानवता को नई आशा भर देते। हमें उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कुछ ही दिनों में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
0: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
1: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन के साथ बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने भारत के रुख को दोहराया, सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा वाणिज्य की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर भी बल दिया। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादुल जापारोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, आर्थिक, फार्मा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, संस्कृति और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री कल बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत और कतर के बीच लंबे समय से मजबूत साझेदारी है जिसमें ऊर्जा सहयोग एक प्रमुख आधार है। श्री पुरी ने कतर में भारत के नवनियुक्त राजदूत डॉ के शिखर रेड्डी से मुलाकात की। श्री पुरी ने पेट्रोनेट एलएनजी और कतर एनर्जी के बीच 20 वर्ष के एलएनजी समझौते का उल्लेख किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह वृद्धि दर 6.9% थी। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास दर मजबूत बनी हुई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी में भी 10.3% की बढ़ोतरी हुई। मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा कि सभी क्षेत्रों में वृद्धि बेहद सकारात्मक है।
3: ओवरऑल ग्रोथ इन ऑल सेक्टर्स हैज बीन वेरी पॉजिटिव और ये यही दर्शाता है कि जो प्रकार से इंटरवेंशंस हुए हैं सरकार के वो इम्पैक्ट रख रहे हैं और जबकि ओवरऑल हालात में चेंजेस है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में उसके बावजूद ग्रोथ रेट इतनी पॉजिटिव है। प्राइवेट और सरकारी दोनों के ही कारण फिक्स कैपिटल ग्रोथ में होता है और 12% का ये भी दर्शाता है कि जो फ्यूचर क्वार्टर्स की ग्रोथ है उसका भी हम एक अंदेशा देता है कि क्या है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को बड़ी उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये उपलब्धि देश के लोगों की सामूहिक शक्ति और दृढ़ता को दर्शाती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि

0: मजबूत आर्थिक प्रदर्शन का श्रेय देश के लोगों और उनकी कड़ी मेहनत को जाता है। वित्त मंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार द्वारा किए गए सुधार और अर्थव्यवस्था के कुशल प्रबंधन के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी जीडीपी वृद्धि की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का प्रमाण है। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। एक रिपोर्ट।
1: गृहमंत्री ने कहा कि समझौते से पूर्वी भारत में लंबे समय से चल रहे जल विवाद का समाधान हो गया है। उन्होंने कहा कि समझौते से बिहार और झारखंड के बड़े ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों किसानों को सिंचाई के लिए और लोगों को पीने का पानी उपलब्ध होगा। श्री शाह ने कहा कि इससे बिहार के भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, गया और पटना को पीने और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इसके अलावा झारखंड के पलामू, गढ़वा और अन्य क्षेत्रों में भी सिंचाई और पीने के लिए पानी उपलब्ध होगा। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के प्रति आभार व्यक्त किया। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: सरकार देश में चिपमान सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 परिव्यय के सेमिकॉन योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। इसके साथ भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग बाजार का लगभग 10% हासिल कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में बताया कि भारत में विकसित हो रहे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की भी उम्मीद है।
2: फैब्रिकेशन में, पैकेजिंग में, इक्विपमेंट में, मटेरियल्स में, इन सब में ट्रेनिंग दी जा रही है और जिस तरह का इकोसिस्टम बन रहा है बहुत जल्दी 50-60,000 डायरेक्ट जॉब्स हर साल इसमें क्रिएट होंगे। ऑलरेडी डिजाइन में 50-60,000 डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। अभी मैन्युफैक्चरिंग में भी इतना लेवल का इसमें जॉब्स क्रिएट होंगे।
0: स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के साथ सक्रिय शासन और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित बहुआयामी मंच पीएम प्रगति के अंतर्गत टीबी उन्मूलन प्रयासों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए अंतर मंत्रालयी समन्वय को मजबूत करने पर बल दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने एसिड की खुदरा बिक्री को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 2013 में दिए गए निर्देश के बावजूद एसिड की आसानी से उपलब्धता को लेकर चिंताओं के बीच आज केंद्र सरकार से पूछा है कि एसिड की खुदरा बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या इसे और कड़े नियमों के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। न्यायालय ने केंद्र, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 सप्ताह के भीतर एसिड हमले के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उचित नीति तैयार करने का भी निर्देश दिया है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के बाद मसौदा सूची जारी कर दिया है। सूची के अनुसार 97 लाख से अधिक मतदाता इसमें शामिल हैं, जबकि 47 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया है कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं है वे 30 सितम्बर तक फॉर्म 6 और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दावे दाखिल कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची नवंबर में जारी की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद बचाव अभियान में लगे सुरक्षा कर्मियों को आधुनिक उपकरणों और हेलीकॉप्टरों की कमी के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने तथा हिमस्खलन के कारण आई इस बाढ़ ने भोटे कोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। नेपाल सेना, नेपाल पुलिस,

0: और सशस्त्र पुलिस बल के जवानों को प्रभावित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि आधुनिक बचाव उपकरणों की कमी के कारण खतरनाक इलाकों में बचाव अभियान विशेष रूप से कठिन हो रहा है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ को विनाशकारी प्राकृतिक आपदा बताया है। भारत ने नेपाल में बचाव कार्यों और पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए विशेष दल तैनात किए हैं। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश और कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले दो दिन के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है। कई इलाकों में जलभराव के कारण जनजीवन प्रभावित है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। AFC अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने आज सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगा मयूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में SCO शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यापार, ऊर्जा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, भारत यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के हर प्रयास का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजशकियान के साथ बातचीत में नौबहन की स्वतंत्रता और नागरिक सुरक्षा पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं से भी मुलाकात की। वे कल शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे पर समझौते से लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मृतकों की संख्या 900 से अधिक हुई और FC अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with Russian President Vladimir Putin in Bishkek, focusing on trade, energy and defense, says India backs every effort to end war in Ukraine. Prime Minister Modi stresses freedom of navigation and civilian protection during meeting with Iran President Masoud Pezeshkian. Prime Minister also meets Kyrgyz Republican Armenian leaders to address SCO summit tomorrow. India's GDP jumps to 7.8% in the first quarter of the current fiscal despite global headwinds. Bihar and Jharkhand reach agreement on Son River water sharing, settling long-standing dispute. Relief and rescue efforts in Nepal flash flood tragedy hit by equipment shortage as death toll crosses 900, over 4,000 remain missing. And in football, India begin campaign at under 20 Asian Cup qualifiers with 1-0 win over Syria at Tashkent. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi held bilateral talks with Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization SCO summit at Bishkek in Kyrgyz Republic today. The discussions focused on key areas of India-Russia bilateral cooperation, including trade and investment, energy and defense. During the meeting, Prime Minister Modi said it was a matter of deep satisfaction that cooperation between India and Russia continue to scale new heights.
2: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
1: On the Ukraine conflict, Prime Minister Modi said they must move from endless wars to ending wars, adding that India supports all efforts towards peace and will continue to do so.
2: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं. भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा. युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देते. हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है.
1: During the meeting, the Prime Minister said all Indians are eager to welcome President Putin to the BRICS summit, which will be hosted in New Delhi in the coming days.
2: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है. सभी भारतवासी भारत में आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं. आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा.
1: President Vladimir Putin showed his satisfaction that Indian-Russian relations continue to strengthen on the basis of the principles of a special and privileged partnership. Prime Minister Modi also held bilateral meetings with the leaders of Iran, Kyrgyz Republic and Armenia today. Mr. Modi and Iran President Dr. Masoud Pezeshkian during the meeting reviewed recent developments in the West Asia region and shared perspectives on the evolving situation. Mr. Modi expressed concern at the escalation of tensions in the region and reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Calling for safeguarding the freedom of navigation and commerce, Mr. Modi emphasized that civilians and civilian infrastructure, including commercial shipping and seafarers, must not be harmed under any circumstances.
3: During his visit to Kyrgyzstan, Prime Minister Narendra Modi today met the President of the Kyrgyz Republic and the Prime Minister of Armenia. During these bilateral meetings, the leaders discussed economic and trade partnerships, enhancing cultural cooperation and growing people-to-people contacts between the two countries. Earlier today, Prime Minister Modi had a warm interaction with members of the Indian community in Bishkek. He appreciated their energy, enthusiasm, and valuable contributions towards strengthening the bonds of friendship between India and the Kyrgyz Republic. Mr. Modi also paid floral tribute at the Mahatma Gandhi Memorial in Bishkek. The Prime Minister will address the 26th Shanghai Cooperation Organization Summit tomorrow. Vikalp Shukla, Akashwani News, Bishkek.
1: This was our correspondent covering Prime Minister Modi's Kyrgyz Republic visit. Mr. Modi reached Bishkek yesterday after concluding his successful visit to Uzbekistan. India's real GDP has observed a growth rate of 7.8% during the first quarter of the current financial year against the growth of 6.9% during the same period of the previous financial year. The Ministry of Statistics and Program Implementation today released the quarterly estimates of GDP for the first quarter from April to June of the current financial year. It said Indian economy has sustained growth momentum despite global headwinds. The nominal GDP has also registered 10.3% growth during the first quarter of the current financial year. Secretary in the Ministry, Dr. Saurabh Garg said, growth across all sectors has been highly positive, which demonstrates that the government interventions are having an impact despite geopolitical situation. Prime Minister Narendra Modi has termed India's exemplary GDP growth of 7.8% in the first quarter of the current financial year a Herculean feat. In a social media post, the Prime Minister said that the achievements reflect the collective strength and resilience of the people of the country, despite oil price shocks, supply chain disruptions and global uncertainties. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman and Union Home Minister Amit Shah said the credit for this strong performance goes to the people of the country and their hard work. The government today notified the Semicon 2.0 scheme with an outlay of 1.27 lakh crore rupees to boost the chip manufacturing ecosystem in the country. With this, India could account for nearly 10% of the global semiconductor industry market in the coming years and is expected to play a much bigger role in the global semiconductor value chain. Union Electronics and Information Technology Minister Ashwini Vaishnaw said this while addressing the media in New Delhi today.
4: There is a significant level of confidence among the global semiconductor industry stakeholders that India is definitely the right place for making major investments in the coming decades. And that is clearly demonstrated by the number of units which have been approved in the Semicon 1.0. That is further demonstrated in the speed at which from the date of approval to date of groundbreaking to the date

0: बाबर ने भोटेकोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने आज सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगामियुम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने आज अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए रिकॉर्ड 207 मैच खेले। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी।

0: अतीत से बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6, दिल से दिल

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6, दिल से दिल।

दोस्तों, जब तक हमें हमारा सच्चा प्यार नहीं मिलता, तब तक जाहिर के मटकते रहते हैं, दर दर की खाक छानते रहते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक मुसाफिर चलते चलते जब थक जाता है ना, तो एक सहारे की तलाश करता है जहां उसे कुछ पल सुकून के मिल सके। बिल्कुल एक अनजान राही की तरह जो अपनी मंजिल की तलाश में शहरों की खाक छानता फिरता है, दर दर की ठोकरें खाता फिरता है।

सरे राह कुछ भी कहा नहीं, कभी उसके घर में गया नहीं। सरे राह कुछ भी कहा नहीं, कभी उसके घर में गया नहीं। मैं जन्म जन्म से उसी का हूं, उसे आज तक ये पता नहीं। ये खुदा के देन अजीब है कि उसी का नाम नसीब है। ये खुदा के देन अजीब है कि उसी का नाम नसीब है। जिसे तूने चाहा वो मिल गया, जिसे मैंने चाहा मिला नहीं।

आकाशवाणी। वेलकम बैक एक बार पुनः दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। दोस्तों आप सुन रहे हैं म्यूजिकल योर्स आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 दिल से दिल तक। दोस्तों आप इस वक्त रंगे महफिल की खूबसूरत और हसीन महफिल में अपने दोस्त प्रवीण शर्मा के साथ और सुन रहे हैं खूबसूरत गजलें। तो देते रहिए हमारे साथ इस खूबसूरत से प्रोग्राम में।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दें, अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दें, हम उनके लिए जिंदगानी लुटा दें, हर एक मोड़ पर हम गमों को सजा दें, चलो जिंदगी को मोहब्बत बना दें।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: दोस्तों, आपको हमारे प्रोग्राम कैसे लगते हैं, आप अपने सुझाव शिकायत हमें मेल कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा ईमेल आईडी है, नोट करें, हमारा ईमेल आईडी है feedback@rainbow@gmail.com। जी हाँ, feedback@rainbow@gmail.com। और सुनना ना भूलें, हर महीने के तीसरे शुक्रवार को दोपहर 1 बजे प्रोग्राम बिंदास बोल। फिलहाल आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंगे महफिल, आकाशवाणी एफ एम रेनबो पर। कहीं जाइए, हम हाजिर हो रहे हैं छोटे से अंतराल के बाद।
2: आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6, दिल से दिल।

छोटो ब्रेक के बाद एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और दोस्तों अब फिलहाल आपसे हम रंगे महफिल से लेते हैं इजाजत, लेकिन जाने से पहले कुछ अर्ज करना चाहते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, आज से मैं अपने गीतों में आतिश पारे भर दूंगा, आज से मैं अपने गीतों में आतिश पारे भर दूंगा, मध्यम नचकीली तानों में जीवन धारे भर दूंगा, जीवन के अंधियारे पथ पर मशाल लेकर निकलूंगा, धरती के फैले आंचल में सुर्ख सितारे भर दूंगा। तो फिलहाल दोस्तों प्रवीण शर्मा को दीजिए रंगे महफिल से इजाजत, आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार, शब आखैर, शुभ रात्रि।

नमस्कार, आकाशवाणी रेनबो पर अब प्रस्तुत हैं अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यापार, ऊर्जा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ बातचीत में नौवहन की स्वतंत्रता और नागरिक सुरक्षा पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं से भी मुलाकात की। वे आज शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे पर समझौते से लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान हुआ। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यापक समीक्षा बैठक की। हरित विकास को गति देने और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी पहलों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मृतकों की संख्या 900 से अधिक हुई। उपकरणों की कमी से राहत और बचाव कार्य प्रभावित। 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता। फुटबॉल में एफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की और दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। इसके साथ ही अर्जेंटीना की जर्सी में उनका 2 दशक लंबा सफर समाप्त हुआ। इसके साथ ही ये समाचार समाप्त हुए।

आकाशवाणी रेनबो पर अब प्रस्तुत है कार्यक्रम द जीरो आर शो। करते हैं शुरुआत कुछ अच्छे शांत जो रात के लिए बहुत ही मुफीद हैं ऐसे गीतों के साथ।

यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

आकाशवाणी रेनबो पर प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यापार, ऊर्जा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन के साथ बातचीत में नौवहन की स्वतंत्रता और नागरिक सुरक्षा पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य

और आर्मेनिया के नेताओं से भी मुलाकात की। वे आज शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की पहली तिमाही में वैश्विक चुनौतियों के बावजूद 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यापक समीक्षा बैठक की। हरित विकास को गति देने और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़े पहलू को मजबूत करने पर चर्चा हुई। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मृतकों की संख्या 900 से अधिक हुई। उपकरणों की कमी से राहत और बचाव कार्य प्रभावित। 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इबोला का प्रकोप गंभीर हुआ। नए आंकड़ों के अनुसार 6,041 मामलों की पुष्टि और 2,911 लोगों की मौत। फुटबॉल में एफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की और दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। इसके साथ ही अर्जेंटीना की जर्सी में उनका 2 दशक लंबा सफर समाप्त हुआ। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

तारों में चमक, फूलों में रंगत ना रहेगी, अरे कुछ भी ना रहेगा अगर मोहब्बत ना रहेगी।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: कोयल सी तेरी बोली, कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु,
1: आए हाय।
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

आकाशवाणी रेनबो पर अब प्रस्तुत हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बिश्केक में शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यापार, ऊर्जा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ भी बातचीत की, नौवहन की स्वतंत्रता और नागरिक सुरक्षा पर बल दिया। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की पहली तिमाही में वैश्विक चुनौतियों के बावजूद 7.8% की वृद्धि दर्ज हुई। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मृतकों की संख्या 900 से अधिक हुई। उपकरणों की कमी से राहत और बचाव कार्य प्रभावित, 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इबोला का प्रकोप गंभीर हुआ। नए आंकड़ों के अनुसार 6,041 मामलों की पुष्टि और 2,911 लोगों की मौत।

फुटबॉल में एफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की और दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। इसके साथ ही अर्जेंटीना की जर्सी में उनका 2 दशक लंबा सफर समाप्त हुआ। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बिश्केक में शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यापार, ऊर्जा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिस्कियन के साथ भी बातचीत की, नौवहन की स्वतंत्रता और नागरिक सुरक्षा पर बल दिया। भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की पहली तिमाही में वैश्विक चुनौतियों के बावजूद 7.8% की वृद्धि दर्ज हुई। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मृतकों की संख्या 900 से अधिक हुई। उपकरणों की कमी से राहत और बचाव कार्य प्रभावित 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इबोला का प्रकोप गंभीर हुआ। नए आंकड़ों के अनुसार 6,041 मामलों की पुष्टि और 2,911 लोगों की मौत। फुटबॉल में एफसी अंडर-20 फुटबॉल एशियाई कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। और दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। इसके साथ ही अर्जेंटीना की जर्सी में उनका 2 दशक लंबा सफर समाप्त हुआ। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी।
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेमो चैनल के साथ। समय उजला है हमारे अगले प्रोग्राम मिडनाइट मेलोडीज का, तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

आप जुड़े हुए आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं से मुलाकात की। चौथा भारत जर्मन पर्यावरण फोरम आज नई दिल्ली में आयोजित होगा। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण प्रकृति संरक्षण जलवायु संरक्षण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन स्नाइडर फोरम की सह अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, दो बच्चों सहित करीब 11 लोगों की मौत। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया। नेपाल में आई अचानक बाढ़ से मृतकों की संख्या 900 से अधिक हुई। उपकरणों की कमी से राहत और बचाव कार्य प्रभावित, 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता। नेपालगंज रोड नानपारा बहराइच रेलखंड के उद्घाटन अवसर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि नेपाल के प्रभावित क्षेत्रों में मदद पहुंचाने के लिए भारत सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की पहली तिमाही में वैश्विक चुनौतियों के बावजूद 7.8% की वृद्धि दर्ज हुई। विदेश मुद्रा बाजार में कल रुपया अमेरिका डॉलर के मुकाबले 22 पैसे मजबूत होकर 95.17 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इबोला का प्रकोप गंभीर हुआ। नए आंकड़ों के अनुसार 6,041 मामलों की पुष्टि और 2,911 लोगों की मौत। फुटबॉल में एफसी अंडर-20 फुटबॉल एशियाई कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की और दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। इसके साथ ही अर्जेंटीना की जर्सी में उनका 2 दशक लंबा सफर समाप्त हुआ। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेमो चैनल के साथ। यूं ही जुड़े रहिए हमारे अगले प्रोग्राम सारे गामा में और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
4: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: जर्मनी के पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण, जलवायु संरक्षण तथा परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन स्नाइडर फोरम की सह अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में कल हुए पटाखा फैक्ट्री विस्फोट हादसे में 2 बच्चों सहित 11 लोगों की मृत्यु हुई। दुर्घटना पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने गहरा दुख व्यक्त किया। नेपाल में बाढ़ से अब तक 900 से अधिक लोगों की मृत्यु, 4,247 से अधिक लोग लापता, उपकरणों की कमी से राहत और बचाव कार्य प्रभावित। वंदे मातरम।